नमस्कार, FM बैंड 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:55 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ आरंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। सुबह के 8:57 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी ही देर बाद 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर होगा रामचरितमानस गान। 9:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 9:40 पर आप सुन पाएंगे झलकी एक पत्नी व्रत। उसके पश्चात आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलें।

10:30 बजे होगा, गाने नहीं तराने नहीं, 10:55 से प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद होगा। 12:05 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी, 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी, 5:30 बजे होगा बालवाणी कार्यक्रम, 6:05 पर फिल्म संगीत सुन पाएंगे, 6:20 पर होगा माटी के स्वर कार्यक्रम। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती, प्रायोजक सरसों अनुसंधान केंद्र सीवर भरतपुर, 7:30 बजे से आप लुत्फ उठा पाएंगे फिल्म संगीत का। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हेलो गोरबंद कार्यक्रम और 9 बजे आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष और विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बाड़मेर के गुढ़ामालानी में प्रदेश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे और विश्व पर्यटन दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गुरु हर सहाय विधानसभा क्षेत्र में नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिरोजपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रदेश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र बालोतरा जिले के गुढ़ामालानी में बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी करेंगे। केंद्र में बाजरे की उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान शुरू कर दिए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इससे पूर्व देश में 13 सेंटर संचालित है, लेकिन उनका मुख्यालय जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय हुआ करती थी, लेकिन अब उसको है जो गुढ़ामालानी में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हाइब्रिड किस्मों के विकास, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, सूखी इलाकों में फसल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ ही श्री अन्न बाजरा की वैल्यूएशन को नए आयाम मिलेंगे। यहाँ पर किसान और वैज्ञानिकों के बीच में सीधी चर्चा भी हो सकेगी। बाजरा अनुसंधान केंद्र शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को बाजरा की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। साथ ही बाजरा की फसल को लेकर कई रिसर्च भी किए जाएंगे। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर में द्रव्यवती नदी पर स्थित 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और गार्डन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ये कार्य राजस्थान रिन्यूअल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता 5 मेगावाट है। उन्होंने बताया कि परियोजना से रोजाना औसतन 20,000 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता कम होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंकों को आज रविवार को शाखाएं खोलने के निर्देश दिए हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। सरकार ने बैंक ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग लेनदेन हड़ताल से पहले पूरा करने की सलाह दी है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो हमारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्व भर में पर्यटकों की पहली पसंद है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश में घरेलू पर्यटन सेवाओं का विस्तार हुआ है।
2: सरकार की नीतियों के चलते हुए टैक्स रेज में कमी करने के कारण से जिस तरह से मिडिल क्लास के पास में सेविंग हुई, आज उसका परिणाम है कि भारत का मार्केट और भारत की परचेजिंग पावर और भारत के ट्रेवल एंड टूरिज्म, तीनों चीजों को बहुत बड़ी उछाल मिली। वो टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल्स की एक आदमी घर से निकल करके बाहर गया, किसी एक बाहर जगह पे जाकर के उसने कम से कम एक रात्रि का आवास किया और वापस अपने घर पे आया। ऐसे ट्रेवल जो है वो 428 करोड़ हुए हैं भारत में। हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल की ग्रोथ रेट जो है 24% की ग्रोथ रेट।
0: इधर प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य भर में राजकीय संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। राजधानी जयपुर के आमेर, हवा महल, जल महल और अल्बर्ट हॉल पर कई कार्यक्रम होंगे। वहीं कोटा के मुकुंदरा नेशनल पार्क दरा में वृक्षारोपण होगा और चौरे घाट चंबल रिवर फ्रंट पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर के जूनागढ़ परिसर में स्थानीय लोक कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कृष्ण कुमार ने बताया कि किताबों से दूर होते जा रहे युवाओं को पुस्तकों से जोड़ने के उद्देश्य से साइलेंट रीडिंग सेशन का आयोजन भी किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी तेज गर्मी और उमस के बाद कल शाम मौसम ने करवट ली और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नागौर के कुचेरा, डेगाना, रेण और मेड़ता में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे रबी की फसल को नुकसान की आशंका है जो खेतों में काट कर रखी गई है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि वहां ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई और मोहनगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई।
3: मोहनगढ़ डेयरी क्षेत्र में पिछले करीब एक सप्ताह से जारी गर्मी के असर के बीच कल रात्रि में मौसम ने अचानक करवट ली। दिन भर की गर्मी और उमस के बाद क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के दौरान हल्के चने के आकार के ओले भी गिरे। नहरी क्षेत्र में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान ग्रामीणों को काफी राहत मिली। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के देबारी अंबेरी हाईवे पर कल एक भीषण हादसे में कार सवार दो मेडिकल विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई जबकि दो विद्यार्थी और ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि देबारी से अंबेरी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए रॉन्ग साइड में चली गई और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराई। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्पतालों और आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान के तहत खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता, भंडारण, पेयजल और व्यक्तिगत स्वच्छता की जाँच की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज बालोतरा के गुढ़ामालानी में प्रदेश के पहले बाजरा अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे और विश्व पर्यटन दिवस पर आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सभी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति भावना लोणकर की आवाज में।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: वंदना कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये अगला भक्ति गीत।

इसी भक्ति वंदना के साथ वंदना कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं झलकी एक पत्नी व्रत।

0: प्यार की।
1: बस भी करो, कोई सुनेगा तो कहेगा ये धोबी की नहीं किसी गवैये की दुकान है।
0: उड़ा ले, तू भी मजाक उड़ा ले। अरे देखना, वो तो चानस मिलने की देर है, लोग अच्छों अच्छों को भूल जाएंगे। अपुन का भी नाम होगा छुट्टन कुमार, प्ले बैक सिंगर।
1: जो जी में आए करो, प्रेस करने के ढेरों कपड़े पड़े हैं अभी। और हाँ, कोट वालों का तकाजा है, उन पर पहले प्रेस कर दो, मैं आई कपड़े देकर।
0: कोट पर पहले? चलो छुट्टन कुमार, आखिर बंबई में भी तो लोगों को शुरू शुरू में लाइफ में फाइट करना होता है ना। अरे अरे अरे, अरे जिम में है कुछ, लगता है 100 रुपए का पत्ता होना चाहिए। ये डाला जेब में हाथ, और ये वारी छुट्टन कुमार की किस्मत, मिला भी तो कागज का टुकड़ा। चलो देखें क्या लिखा है। जाने वफा, शाम का इंतजार है, दिल वाले बाग में जरूर मिलना, सिर्फ तुम्हारे शब्दों में। जाने जिगर।
1: हाय हाय, ये क्या है, हाथ में कौन सा कागज है?
0: कुछ नहीं कुछ नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है।
1: फिर दो मुझे।
0: हाँ ये लो, लेकिन कसम से मैंने नहीं लिखा।
1: अच्छा तो ये लिखा जा रहा है, अरे मेरी किस्मत भी फूट गई, अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई।
0: अरे अरे अरे भगवान, अरे क्यों बेफिजूल रोए चले जा रही है?
1: मेरी किस्मत।
0: अरे मैं पूछता हूँ, क्या हो रहा है ये?
1: अरे होगा क्या, अरे जो होना तो वो हो चुका है? अब तो प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं।
0: अरे वो चिट्ठी तो इस कोर्ट में से निकली है। अब देख, शादी के पहले तेरी को तो चिट्ठी ऐसी नहीं लिख सका, अपन की किस्मत में सिर्फ दूसरों के खत पढ़ना लिखा था।
1: तो यूं बोलो ना, मेरी तो चार ही निकल गई थी।
0: अपन तो बस सुन ले, जैसे वो पतिव्रता स्त्रियां होती है ना।

0: वैसे एक पत्नी व्रत वाले हैं और इसीलिए एड्स से बचे रहते हैं।
1: लेकिन ये चिट्ठी कौन से कोट में से निकली?
0: इसमें से? अरे ये काले रंग वाले कोट में से, और क्या?
1: क्या सोचने लगे?
0: सोच रहा हूँ छुट्टन ने भी क्या दिमाग पाया है। वाह वाह, क्या धांसू आइडिया आया है दिमाग में।
1: आए हाय, मैं भी तो सुनूं।
0: देखो ये काले रंग का कोट 11 नंबर वाले वर्मा जी का है ना?
1: हाँ वो तो है, लेकिन
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब छुट्टन कुमार का कमाल देखना।
1: ऐसी क्या बात है, कुछ मैं भी तो सुनूं।
0: ये 11 नंबर वाले वर्मा जी उस रोज बड़े अकड़ रहे थे ना?
1: हाँ, और 3 महीने से अपने रुपए भी दबा कर बैठे हुए हैं।
0: बस तो आज बदला लेने का दिन आ गया है।
1: देखो तुम्हें मेरे सर की कसम, लड़ाई झगड़ा नहीं करना।
0: अरे वैसे तो छट्टन कुमार किसी से नहीं डरते, लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन इस बार ये जंग है दिमाग की। मैं ये चिट्ठी जाकर वर्मा जी की पत्नी को दे देता हूँ, हैं? और कहूंगा कि ये उनके पति के इस काले कलूटे कोट में से निकली है।
1: अरे वाह, वाकई तुम्हारा दिमाग लाखों में एक का होगा।
0: हाँ तो ले संभाल दुकान और मैं देकर आया कोट।
1: हाँ।
2: इस छुट्टन के बच्चे को तो आइंदा से कपड़े देने ही नहीं, अब तक नहीं आया कब वक्त।
3: अजी वो आए तब तक तुम कुछ खा पी क्यों नहीं लेते?
2: वो तुम्हें खाने की पड़ी है, और यहाँ मेरा जी जल रहा है। आखिर दफ्तर में अफसर हूँ, अफसर मुझे तो समय का पाबंद होना चाहिए ना।
3: जैसे कि समय की पाबंदी दूसरों के लिए तो है ही नहीं।
2: देखो देखो, इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं हूँ।
3: तुम्हारे मूड को सब जानते हैं, हमेशा मुंह फुलाए रहते हो।
0: बाबूजी, अजी कपड़े ले लो।
3: हाँ हाँ ले आओ अंदर।
2: अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं टावल में हूँ। ऐसा करो मैं भीतर जाता हूँ, फिर तुम उसे बुलाओ।
3: ठीक है ठीक है।
0: ये रहे बीवी जी कपड़े, और ये कागज इस कोट की जेब में से निकला है।
3: कागज?
0: हाँ।
3: कैसा कागज?
0: ये तो अपन को पता नहीं, अपन तो प्लेबैक सिंगर है होने वाले। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
3: अरे ये तो चिट्ठी ही है, जरा देखूं तो। जाने वफा, हाय राम किस बेशरम ने लिखा है। शाम का इंतजार है और दिल वाले बाग में जरूर मिलना, सिर्फ तुम्हारे शब्दों में जाने जिगर। ठीक है मैं भी देखती हूँ इन्हें आज।
2: अरे दे गया कपड़े, इस छुट्टन के बच्चे को तो बदलना ही पड़ेगा।
3: बड़ा वक्त लगा रहे थे आज बनने सवरने में, किसी खास जगह जाना है क्या?
2: नहीं बस यूं ही समझो, दफ्तर में आज एक पार्टी है।
3: अच्छा, लेकिन पार्टी का तो तुमने जिक्र ही नहीं किया, थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि दफ्तर को देर हो रही है।
2: हाँ मुझे वाकई देर हो रही है, ये सब दफ्तर की बातें हैं।
3: वो मैं सब समझती हूँ, किसकी बातें हैं?
2: किसकी बातें हैं, क्या मतलब है तुम्हारा?
3: मतलब कुछ नहीं, जरा तुम्हारे सास ससुर को यहाँ आने को कहना पड़ेगा, आखिर वो भी तो आकर देखें कि उनके दामाद क्या गुल खिला रहे हैं।
2: अरे देखो देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, यूं घुमा फिरा कर बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा।
3: कौन किसे घुमा फिरा रहा है ये तो तुम ही जानो।
2: देखो देखो मैं कहता हूँ। खैर जाने दो, अभी देर हो रही है, लाओ कोट दो जरा।
3: कोट तो ले लो, लेकिन इसकी जेब में किसी का दिल रखा है।
2: दिल?
3: हाँ हाँ दिल, ध्यान से रखना।
2: हे भगवान, अरे न जाने तुम्हें आज क्या हो गया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बड़ी देर हो गई है आज। अरे वो पड़ोस के शर्मा जी से लिफ्ट मिल जाती स्कूटर पर, वो भी नहीं मिलेगी, वो भी चले गए होंगे।
3: अब ये तो तुम ही जानो कि कौन किसे लिफ्ट दे रहा है।
2: अरे अब कौन किसे लिफ्ट देगा, खुद के स्कूटर से ही जाना पड़ेगा। आखिर लेट हो ही गया, बड़े साहब जरूर नाराज होंगे। जल्दी से फाइल के कागज तैयार कर लेता हूँ। हाँ फाइल तैयार करके ले चलो।
0: वर्मा बाबूजी, आपको बड़े साहब याद कर रहे हैं।
2: अरे जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, अभी अभी तो आया हूँ, जरा रुमाल से पसीना तो पहुँच लूँ। ये क्या गिरा? जरूर इसी फाइल का कागज होगा, इसे उठाकर फाइल में रख देता हूँ।
0: चलो बेटा वर्मा, अब बड़े साहब के सामने देना सफाई लेट आने की। छुट्टन कुमार धोबी तो तुम्हें बचाने से रहा।
2: मैं अंदर आ सकता हूँ सर?
4: यस कम इन।
2: वो बात ये है सर कि
4: हाँ, बस नहीं मिली होगी, मेहमान आ गए होंगे, बीवी को अस्पताल ले जाना पड़ा होगा। मिस्टर वर्मा, दफ्तर में लेट पहुंचने के ये बहाने बहुत पुराने हैं, कोई नई तरकीब सोचो।
2: मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, पहले तो पत्नी को लेकर अस्पताल गया, वहाँ 20 मिनट सुई को गर्म पानी में उबालने में लगे।
4: अच्छा अच्छा।
2: अब आप तो जानते हैं ना सर, आजकल एड्स का खतरा है, एड्स का, और मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता सर। और फिर वो धोबी कपड़े भी तो सर।
4: वो तो ठीक है, एड्स से बचना चाहिए, लेकिन कपड़ों का क्या चक्कर है भाई? सभी कपड़े एक साथ धुलने के लिए दे दिए थे क्या?
2: नहीं सर, वो बात यह है कि ये कोट दिया था।
4: अच्छा, तो बिना कोट पहने आप ऑफिस नहीं आ सकते, क्यों? मैं पूछता हूं, आखिर आप वक्त पर आना कब शुरू करेंगे?
2: वो बात यह है सर कि
4: क्या बात है? हैं? कोट क्या दफ्तर की यूनिफॉर्म है?
2: नहीं सर, वो आज छोटे साहब की विदाई पार्टी है ना।
4: अच्छा अच्छा ठीक है, आइंदा टाइम से आया कीजिए।
2: यस सर।
4: सुनो, वो फाइल कंप्लीट है?
2: यस सर, ये लीजिए।
4: चलो फाइल तो तैयार की।
2: वो बात ये है सर कि मैं लेट भले हो जाऊं, लेकिन ऑफिस के काम में देरी नहीं करता सर। और बात ये भी है सर कि
4: मिस्टर वर्मा।
2: यस सर।
4: ये आप फाइल तैयार करके लाए हैं?
2: हाँ सर, कल देर तक बैठकर मैंने इसे पूरा किया है सर।
4: क्या खास पूरा किया था? ये ऑफिस की फाइल है या प्रेम पत्रों का पुलंदा?
2: जी सर, जी सर।
4: देखिए इसे और पढ़िए, मैं कहता हूँ पढ़िए।
2: जी,
4: जरा जोर से पढ़िए।
2: यस सर, लिखा है जाने वफा शाम का इंतजार है।
4: क्या है ये, क्या है? आखिर मैं पूछता हूँ, ये क्या है? दफ्तर में लव लेटर लिखे जा रहे हैं, हैं? उनकी फाइलें बनाई जा रही हैं। ये दफ्तर है या इश्क का मैदान?
2: ऊपर वाला गवाह है सर, मैं नहीं जानता ये प्रेम पत्र इसमें कब और कैसे आ गया सर।
4: बड़े भोले बनते हो मिस्टर वर्मा, आप क्या समझते हैं दफ्तर में जो कुछ होता है उसकी मुझे खबर नहीं? एक एक का इतिहास मुझे पता है, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, हिस्ट्री, समझे?
2: सर बेशक मैं इश्क करता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी से।
4: फिर ये प्रेम पत्र आसमान से आकर इस फाइल में बैठ गया?
2: मेरा कोई कसूर नहीं है सर।
4: मैं पूछता हूँ, फिर ये पत्र आया कहाँ से?
2: मैं नहीं जानता सर, जरूर ऑफिस के किसी आदमी की शरारत है सर। मैं तो सर सभी से कहता आया हूँ,
5: एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, वरना एड्स का खतरा रहता है।
2: और सर वो अपना नया क्लर्क है ना, वो नया क्लर्क
4: कौन
2: इधर उधर जाता आता है सर, एक दिन खुद भी एड्स का बीमार होगा। और सर हम
4: ठीक है, समझाओ उसे।
2: बहुत समझाता हूँ सर, बहुत समझाता हूँ, और मैंने तो ये भी बता दिया कि एक बार एड्स हुआ तो एक वर्ष में 40,000 रुपए की दवाइयों का खर्च समझो, और फिर भी मौत तो सामने ही है एक आध साल में। इससे अच्छा है सर एड्स से बचकर ही रहा जाए। और वो सर, वो सड़कों पर आपने तख्ती तो देखी है ना?
4: तख्ती?
2: हाँ,
4: कैसी तख्ती?
2: यही कि असुरक्षित यौन संबंध से बचिए और खून चढ़ाने से पहले खून की जांच कराइए।
4: भाई वर्मा, ये तो समझ में आता है कि सुरक्षित यौन संबंध होना चाहिए, पर ये खून की जांच क्यों?
2: ताकि ये पता चल सके कि HIV के विषाणु तो खून में नहीं है।
4: और कौन सी तख्ती चाहते हो?
2: सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सर एड्स के मामले में सावधानी ही भली।
4: बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन देखो आज ही अपने दफ्तर में भी एक ऐसी तख्ती लटकवाओ।
2: वही दुर्घटना वाली सर?
4: अरे नहीं, उस पर लिखवाइए दफ्तर में इश्किया खतो किताबत की सख्त ममानियत है।
2: अभी बनवा लाता हूँ सर।
4: अरे सुनो वर्मा,
2: हाँ?
4: उस पर लिखवाइए इश्क आदमी को निकम्मा बनाता है। गालिब ने भी तो ऐसा ही कुछ कहा था ना?
2: हाँ कहा तो है सर, लेकिन बुरा न माने तो एक राय अपनी भी दे दूं।
4: हाँ कहिए कहिए।
2: हमें तख्ती पर लिख

0: खाना चाहिए, परिवार की परिधि में रहिए, एड्स से बचिए।
1: वाह वर्मा जी, कभी कभी आप ठीक कहते हैं। हाँ यही लिखवाइएगा, और हाँ दफ्तर में सभी को कह दीजिए कि आइंदा कोई प्रेम पत्र ना लिखे।
0: नहीं नहीं सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए सर।
1: क्यों,
0: वो प्रेम पत्र घर पर तो लिख ही सकते हैं ना?
1: बेशक लिख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को,
0: या फिर
1: क्या,
0: सिर्फ अपनी पत्नी को।
1: हे वर्मा।

अभी आप सुन रहे थे झलकी एक पत्नी व्रत। आइए अब सुनते हैं हरिहरन की आवाज में ये गजल।

अभी आपने सुना हरि हरन को। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बिंद 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है आंधी। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गाने पुराने जमाने के, ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और अगली प्रस्तुति है हेमलता की आवाज में, फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

लीजिए अब सुनिए भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म किनारा से ये अगला गीत, जिसको लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनपढ़ से। ये अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की है। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम से अगला गीत, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

गाने पुराने ज़माने के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म माया से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म माया में। इसी गीत के साथ हमारा आज का ये गाने पुराने जमाने के कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का पहला गीत दलेर मेहंदी और ऋचा शर्मा की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले से।

गाने नए तराने नए आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम। लीजिए अगला गीत आपके लिए फिल्म बैंड बाजा बारात से। आवाजें हैं सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सजाया है सलीम सुलेमानी ने।

अगला गीत आपके लिए है फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से, शंकर महादेवन अलीशा मेंडोनासा की आवाज़ में ये गीत है और इस गीत को लिखा है शंकर एहसान लोई ने, संगीत से सजाया है जावेद अख्तर ने।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चरमी चैनल को। आप सुन रहे हैं गाने नए तराने नए। लीजिए अगला तराना और गाना आपके लिए फिल्म इश्किया से। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और मीका सिंह की।
1: Dun dun dun.

लीजिए अब सुनिए, फिल्म आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से ये गाना, जिसमें आवाज़ है शिखर राव जी आने की।

फिल्म आई हेट लव स्टोरीज़ के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गाने नए तराने नए यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10:55 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता से संवाद होगा, जो पहले हिंदी में तत्पश्चात संस्कृत अनुवाद में प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जी कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है।

0: होशियार बनिए, सतर्क रहिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था

इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में
प्रसिद्ध सूर्य मंदिर

पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों, उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर
पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी।
साथियों,

जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल

0: लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीयसेनया पाकिस्तानदेशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। LOC इति नियंत्रणरेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्यकार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढ़तया संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनम् उदाहरण प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिक विस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 18-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 13 तिथौ दिल्ली नगरे घटितेषु क्रमिक विस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपय सप्ताहानन्तरमेव मुम्बई नगरे 26/11 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतंकवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकम् आतंकवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।
1: हेलो, हाँ हाँ आज

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: आइए सुने अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
5: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
6: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। दिन का 1 बज रहा है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात

0: की 138वीं कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति, जनगणना, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, खेल प्रतिभाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के 10 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद का भारत ने करारा जवाब दिया है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश के लाखों युवाओं ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। उन्होंने युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और जरूरतमंद लोगों का साथ देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने को कहा। प्रधानमंत्री ने जनगणना को राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए लोगों से इसमें भी सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। श्री मोदी ने मोबाइल के जरिए स्वगणना की सुविधा का भी उल्लेख किया।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोकल फॉर वोकल की अपील को दोहराया। उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश में इस बार भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। प्रदेश भाजपा की ओर से मुख्यालयों और जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर जसपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ मन की बात को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री गुरु हर सहाय विधानसभा क्षेत्र में नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका फिरोजपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक मजबूत आधार भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए पर्यटन को एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। श्री शेखावत ने पर्यटन के लिए भारत को विश्व का पसंदीदा देश बनाने का संकल्प मजबूत करने की अपील की। प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य भर में राजकीय संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। सवाईमाधोपुर में पर्यटन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन पर देशी विदेशी पर्यटकों का परंपरागत रूप से तिलक लगाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्ची घोड़ी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद आज सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने बैंक रविवार का अवकाश होने के बावजूद खुले हुए हैं। सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी के लिए करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखा गया है। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिट चैनल। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र।

0: रहता है।
1: कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन, श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही। और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं, ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहां तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है, आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सन हमने बता दिया है आपको, फिल्म

का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नज़ारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नज़ारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारें नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूं मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरी गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और हाँ चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और, हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा, उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई, आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं, और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहां भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था चलो सजना जहां तक घटा चले। तो कहां तक घटा है और कहां तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहनें यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहे पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे

में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना? और हाँ, जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन? ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है, लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुँचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहां लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहां पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहां कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको बूझना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा, नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सब परिवार हमने। शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें। जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके, तो बस आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं। पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खानपान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है। और इसीलिए पर्यटन यानी घूमना फिरना हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस खूबसूरत दुनिया को देखने निकलते हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

घूमना फिरना जितना आनंद देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी हमसे मांगता है। विश्व में जिस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं वहाँ कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हम

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस क्यों भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं

0: की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था OP नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बीरक जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर अमर तामकर दिलीप वर्मा राजू तामकर रज्जन रजक संजीव

वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और मम्मी पापा। नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे। गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रुपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार

है राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूर जहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुक टुक, प्रिंस और एकांक्ष गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर। सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार। विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कूचन, राजकमल सिनिगदा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा, भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुर्चे तुम, सोनू और मोनू। दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

0: साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतुबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।
1: दिल

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी, अब क्या है?
3: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकाले, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
4: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
3: अरे आपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
4: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
3: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होती बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती, बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
4: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
3: मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारूं, चलती हूँ, राम राम।
4: अपना खून, इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है।

0: नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी हूं मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
1: ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
0: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
1: इसमें तुम्हारा क्या कसूर? भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
0: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
1: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
0: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
1: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
0: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
0: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
1: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइट ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
1: हा?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल। बांकेलाल मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है। हम लोग फलो मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
0: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला। पर माँ कहती है शादी कर ले।
0: अच्छा ये बताइए शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
2: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए। सोने से

0: खाइए इस खुशी में।
1: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
2: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था। शायद बी ग्रुप है।
3: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
2: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
3: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
4: प्यारी, चाय ले जा।
3: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
3: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
4: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
2: प्यारी तो चुप रहे। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
3: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
2: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनीमिक हूँ।
3: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनीमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
2: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
3: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
2: शायद अब वो समय नहीं है।
3: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
2: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
3: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
2: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
3: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
2: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
3: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
2: मगर कौन समझता है इस बात को? 3 जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
4: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
3: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
2: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
3: देखो, इस तरह मन छूटा ना।

0: करो, लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। तेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
1: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
0: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: बीवी जी, हाँ, इसी बात पर ले आऊँ गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा, फौरन तौर पर।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जान अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मामने सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम नहीं है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प कर रहे हैं।
1: हाँ, इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार। घर में आई नववधु का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्म है। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा। तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
0: क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ, हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई?
2: कौन जो आ गया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ पास आओ। ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।

0: समय मुझे नटकर लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमय। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
1: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता
0: हूँ। ना ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
1: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
1: सीमा। अच्छा, अब क्या करूं?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
1: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
1: वो बच्चे अब क्या कर रही हो?
0: अब बेणी में फूल गूंद रही हूँ।
1: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
1: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह,
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं धोया।
0: क्षण क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है। मैं रति हो गई हूँ।
1: रहते की तरह सुंदर मैं तो फेंक रहा हूँ।
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
1: अरे सीमा के कोई बात नहीं रहा, मैं हर के रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की कथी के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
1: तुम क्या सोचने लगे हैं? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं।
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा, तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो, मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता करो।
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।

0: क्या? भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहां, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं, नहीं होने दूंगी।
2: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़े हैं। बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
2: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
0: मैं चलूँ तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा पर ही लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं? तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने पैक से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
0: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा?
0: वो
2: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
3: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक।
6: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
6: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
7: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम,
5: मैं निकला और दिल लेके
1: पिंजर, स्थान बेमिस संगीत की
6: पूजा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
7: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
1: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
7: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
1: अच्छा,
7: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
1: खुद ही गा रहे हैं?
7: खुद ही गा रहे हैं।
1: गाना कौन सा था?
7: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
1: जी, जी।
7: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून आया हुआ उनको उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
1: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
7: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
1: जी।
7: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
1: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
7: सारी उन्होंने वहां निकाली।
1: गजब की बात है ये तो।
7: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
1: खत्म हो गया,
7: नाउ ही इनटू म्यूजिक।
1: गजब की बात है ये।
7: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
1: हाँ,
7: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
1: हाँ,
7: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद एक डेढ़ घंटा गा रहे थे वो।
1: बाप रे,
7: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की। कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
1: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था। वो गाना यहाँ सुन लेते
7: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
1: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते हैं, वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था तब उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है। गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे होते, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: ही वाज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट नो एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: तमाम चीजों का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना, दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है
0: जी।

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक
0: मैं
1: ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, और सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है वो,
1: जी,
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सेक्सोफोन के, बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे, और
1: बिल्कुल,
0: हमने साथ में बहुत काम किया हमने।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और उनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उनपे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा
1: बात है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं आने गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको।
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज, राज सोनिक, जो
1: जी
0: मेरे
1: जी
0: यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं, तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैं कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए
0: ये
1: थे जी,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं।
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो? जैसे
1: क्या दौर था, क्या
0: जैसे
1: लोग थे
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना।
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए, ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का,
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है,
0: जी
1: उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत। हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे,
1: अच्छा
0: उन्होंने बुला लिया उनको। और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे।
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा
0: ये उनके सलाहकार थे, केसी और श्याम राव। भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया, 10:15 बजे
1: जी
0: छोटा सा आदमी आता है, 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: हाँ, वो छोटे कद के
0: मैंने
1: थे
0: पहली दफा देखा उनको।
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
1: जी
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं। आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे। कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ। केसी, श्यामराव, म्यूजिक सुनाओ। फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैं, हम सोच रहे हैं नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ, और हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है? कैसे बोलते, ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ
1: नहीं
0: तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहें शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए। मैं कह, यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के सुनाओ। हाँ अब सब थाली, अब सुनाएंगे म्यूजिक। और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ,
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक
1: स्टाइल
0: शुरू
1: थी।
0: हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है।
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब
0: तब
1: बजाएंगे,
0: हम बजाएंगे।
1: गजब गजब
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी।
0: मिशन
1: उनके
0: का।
1: साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए,
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SG बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है
0: बर्मन साहब के यहाँ तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी, रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया।

0: उन्होंने वो पीस बजाया और मैंने वो यहां से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मुरली को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए। तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मुरली को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए,
1: अरे बाप रे,
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा।
1: गजब।
0: यूनुस जी, मैं बैठा था सेकंड या थर्ड रो में। सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी। दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और अपनी धुन के पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है?
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरली ने छोड़ दिया था,
1: जी
0: तो यहां एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट
1: जी,
0: मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरली तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया, बासु मुरली काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा,
1: हाँ
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
1: जी जी
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब भालो।
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया,
1: जी
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेडी का ऑफर आया, अन्नू मेलक मेरे पीछे, शंकर जयकिशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का, बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे,
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे
0: मैं उनके अंडर
1: का?
0: में, उनके अंडर में काम कर चुका हूं, मैं अभी कैसे जाऊं उनके?
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक, किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
1: जी।
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके उनके एंड में, तो बिल्कुल नहीं बजा सका।

0: तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेती बाड़ी प्रोग्राम सुनने हैंग भाया ने बाया ने और छोटा छोटा नए ना टाबरा ने आप रे कुलदीप भाई रा गणे हेत कोडू राम राम। बाया देखो आज है खेती बाड़ी और जो थाने ध्यान भी है कि भाई खेती बाड़ी रो जो को टेम है जो को अब थोड़ो सो परिवर्तित हो गयो है 4:30 बजे आदितवार दिन आप 4:30 बजे जरूर आकाशवाणी नागो ट्यून करो और सुनो सा खेती बाड़ी प्रोग्राम। बाया देखो रोज आपा चौपाल माते आवा और रोज नित नुवी जानकारी ले रहा हाँ नित नुवी हताई करा हाँ। आज बात करा ला वर्मी कंपोस्ट री। बाया देखो वर्मी कंपोस्ट जो थे जानो ही हो कि भाई गोबर री खाद हुए है पर गोबर री खाद सागे सागे केंच वाली खाद भी हुआ करे है और केंच वाने आपा जो को किसान रो मित्र किया करा दोस्त किया करा। और भाया देखो जो कि वर्मी कंपोस्ट है इन्हें हिंदी में आप केंचवा खाद देशी भाषा में जो की बात करा तो केंचवा खाद किया करा हाँ। आज की खाद है केंचवा और अन्य कीड़ा है बैने और सागे सागे जैविक कचरा यानी गोबर पेड़ पौधा रा अवशेष और रसोई को जो को कचरो हुए बहने सड़ार और बहने जकी मिलार और एक अत्यंत उपजाऊ जकी खाद बनावा हाँ बिना पा पौष्टिक जैविक खाद कहवा हाँ। भाया देखो वर्मी कंपोस्ट रा मुख्य बिंदु री बात करा के भाई इमाइने जका मेन फैक्टर है मुख्य बिंदु है बेकाई काई हुए भाई वर्मी कंपोस्ट है जकी कियान आपा बना सका हाँ। केंच वाला मल और सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ आरा मिश्रण जकी है ब्यू आपा ने केंचवारी खाद वर्मी कंपोस्ट मिले है वो एक प्राकृतिक और सागे सागे जैविक

0: उर्वरक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और भैया ये विशेषता आ हुए है कि वर्मी कंपोस्ट से मायने बदबू को नहीं आवे है। और प्रमुख लाभ री बात करा तो यूं है, सब बढ़िया बात आ है कि मिट्टी री उपजाऊ शक्ति है बाह जकी है बढ़िया करे है। आ है जकी वर्मी कंपोस्ट खाद मिट्टी ने भुरभुरी, नरम और उपजाऊ बनाया करे है। पोषक तत्वारी अगर बात करा तो इरे मायने नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर और अन्य जगह सूक्ष्म पोषक तत्व है वे भरपूर मात्रा में हुआ करे हैं। और इनरे सागे सागे पौधारों विकास भी आज की खाद है बा करे है। यूं पौधारी जड़ा मजबूत हुआ करे है और पौधा मायने बीमारी है जकी रोग है वे कम लाग्या करे है। बाया देखो हताई तो चालती रही वर्मी कंपोस्ट खाद लिया पा बात करी, पण सागे सागे देखो वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद है जिका आपस में जुड़ियो रहा है, एक दूसरे का पूरक है। तो जैविक खाद री बात करा पहले आप लेवा और छोटो सो ब्रेक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बाया जो आपने अडिक भी रहे है कि भाई चौपाल रे मायने खेती बाड़ी रे मायने कोई भेंट वार्ता है, कोई भेंट है, कोई बंतल वंतल सुनाओ ताकि जो को है कोई नित नुवी जो जानकारी है, नवाचार है कृषि रे मायने खेती रे मायने बे आपने मिल सके। तो जैविक खाद उत्पादनकर्ता मयूर जैन बात करी अपारे दिनेश भाई, तो सुनो सा आप बंतल।
4: किसान भाई टेम टेम सारू आपा है जी को नूत परार आकाशवाणी स्टूडियो में बुलावा और मेहमान जी का अपने आवे बे आपने खूब सारी जानकारी देवे। आज मारे बीचे अपने स्टूडियो में आयोड़ा है मारे साथ जैविक खाद उत्पादन करता मयूर जी जैन, आप रो स्टूडियो में घणो स्वागत।
5: नमस्कार, राम राम साहब।
4: तो नमस्कार, राम राम। मयूर जी आप जिकी जैविक खाद है बना रिया हो तो उन्हीं सारू आप रे जिको कई विचार आया वेला, ये आप पहली जिको तरीको खेती को आप जानता ही कोनी खेती के बारे में की भी, तो पहले तो आप रे बारे में आप बताओ।
5: मेरा नाम मयूर जैन है और मैं नागौर निवासी हूँ और मैं जैविक खाद बना रहा हूँ जिसमें मुख्य रूप से प्रोम खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद है और पूरे राजस्थान में अपना सप्लाई हो रहा है।
4: तो थे बताइए जैन साहब आप बात के भाई वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद जिकी थे बना उनकी बात करो, तो आप तो पच पढ़ाई बनाई कितनी कहीं करी और पचे खेती करने की कराया?
5: मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था और कह सकते हैं ना कि आदमी को जो करना होता है उसका कर्म जहाँ लिखा होता है ना वो अपने आप वहाँ पहुंच ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, पढ़ाई कर रहा था कॉमर्स की CA की और खेती अपना स्वयं का खेत था, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जोधिया से हिंगोनिया गाँव है, वहाँ पे अपनी 150 बीघा जमीन है, तो वहाँ पे 40-50 सालों से आज तक कोई भी खेती हुई नहीं थी। गाँव में बीड़ा रखा था, गायें चरती थी, तो मेरे पास मतलब पढ़ाई करते करते कुछ नया करने का, मैं नया हर काम कुछ ना कुछ नया करने का शौकीन था और चुनौतियां का सामना करना या कोई नई एडवेंचर करना, तो अपने स्वयं के खेत में गया, खेत देखा तो ऐसा था कि मैं सीवी उसकी खेत की पहचान नहीं पाता था।
4: देखो सर, दौरा धरती ही हाँ। और आप पहली बार गया तो आपने वाजबी बात है कि हाँ। आप पतो कौन लगा पाया कि सीव कट कहीं है
5: हाँ। हाँ। तो मैंने किसानों को पूछा कि ये खेत की बिजाई करेंगे क्या, तो किसान मेरा मजाक उठा रहे, क्या क्या मजाक कर रहा है। तो मैं फिर मैंने ठान ली कि भाई कैसे ही करके इन किसानों से खेती करवानी है, तो सुबह 4 बजे साइकिल लेके चला गया। गांव वाले मजाक सोच रहे थे गांव से साइकिल लेके आया होगा, लेकिन नागौर से साइकिल लेके गया और फिर किसानों से एक एक से बातचीत की और उस समय मेरे दादाजी भी थे, तो दादाजी ने गांव वालों को बोला कि एक बार, हालांकि हमने खेती नहीं की है लेकिन एक बार बच्चे के कहने पर खेती करो, तो किसान मेरे साथ जुड़े और उस समय पूरे 150 बीघा में हमने खेती की और उसमें हमने अच्छा मुनाफा भी कमाया था। गंवार, मोट, तिल जो एसेंशियल जमीन में उस जमीन में होता है वो चीजें की थी और नेक्स्ट ईयर हमने पूरा पूरी खेत में बाजरे की फसल भी ली थी, तो यहाँ ये फसल चक्र चलता है उनका, उस हिसाब से हमने खेती की थी।
4: तो जब आप खेती प्रारंभ करी या खेती करनी शुरू करी या खेती देखी कि ना किसाना के साथ दिखिया, तो आपने लागे कि भाई खेती रो काम है जिको की हार्ड है की दोरो है, मैंने फिर भी और उत्पादन कम हो रही है जरा वो आप रे एक आइडियो।

0: कि जिंदगी में एक बार खेती से तो उन्हें जुड़ना ही चाहिए। अगर एक बार बंदा खेती से जुड़ जाएगा तो मेरा यह मानना है कि वो जरूर खेती करेगा। मानते हैं कि कई सारे सिचुएशन परिस्थितियों में घाटे का सौदा होता है खेती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खेती फायदेमंद नहीं है। अगर सही से विचारपूर्ण तरीके से की जाए तो खेती जरूर फायदेमंद है।
1: बिल्कुल, आप बात बढ़िया की कि भाई खेती फायदेमंद है। तो आपरे दिमाग में और जैविक खाद उत्पादन करने को जी को तरीको है वो की करायो।
0: जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एडवेंचर या नई चीज करने का शौकीन हूँ, तो मैं पढ़ाई करते करते उस समय मैं मुंबई रह रहा था और वहाँ खूब सारे एग्जीबिशंस वगैरह मैं अटेंड करता था। तो मेरी जैसे 150 बीघा की जमीन यूं ही खाली पड़ी थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इस जमीन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं सोलर एग्जीबिशंस वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाऊँ, या उसके लिए मैंने बड़ी कंपनियों से भी बातचीत की, लेकिन वो सरकम चांसेस या परिस्थिति नहीं बैठ पाई। लेकिन मैंने ठान लिया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे करना है, तो जब तक मैं जमीन से जुड़ूंगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले किसानों को जोड़ के वहाँ खेती करनी सोची, और तब मेरे को समझ में आया कि खाद डालना या जमीन को सही करना ये हमारा एक प्राथमिक कर्तव्य है। अगर जो किसान अपनी जमीन को माँ मानता है तो सबसे पहले उसका मुख्य कर्तव्य यही है कि अपनी जमीन को एकदम बढ़िया रखे। उसके लिए उसे जैविक खाद खेत में डालना ही होगा, खेत में पशु रखने ही होंगे, तभी वह अपनी जमीन को बरकरार रख पाएगा। नहीं तो कहते हैं ना कि आज के टाइम में अगर किसान उस पर चल रहा है या हल जोत रहा है, तो आने वाले टाइम में उसके पोते पड़पोते उस पर मोटरसाइकिल चलाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है आपकी। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने यूनिट लगाई या उसके लिए तो पहले उसकी तैयारी किस प्रकार की?
0: तो मैं ये चाहता था कि कुछ नया हो, तो नागौर के अंदर डेयरी गौशालाज खूब सारा मतलब वेस्ट मटेरियल अवेलेबल था। तो मैं इस एक नई सोच से चाहता था कि किसान को बल्क मात्रा में गोबर खाद का मतलब एक सड़ी हुई गोबर खाद मिले, जिससे कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो और एक नई चीज़ हो कि आज डेयरी गौशाला भी घाटे में जा रही है, उसे मेंटेन करना या डोनेशन से चलना, तो पशु उत्पादकता में कमी आना, तो ये सारों चीजों को एक साथ जोड़ के एक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि इन गौशालाओं के गोबर को अगर मैं सड़ा के एक बायोगैस यूनिट लगाऊं और
1: जी
0: जिसका मैं गैस उत्पादन करूं जो तो गाड़ियों में बिके, और वापिस जो सड़ी हुई खाद है, आज किसान 1 बीघा में एक ट्रॉली काम ले रहा है, तो अगर ये बायोगैस से सलरी निकलती है ये सड़ी हुई खाद जाती है तो वो 4 बीघा में वही खाद डालेगा। तो इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा और सबसे पहले मैंने डेयरी के लोगों से कांटेक्ट स्थापित करना शुरू किया।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सबसे पहले डेयरी की यूनिट में ही मैंने वर्मी कंपोस्ट की खाद का प्लांट डाला, ताकि किसानों को पता चल सके कि ये वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनती है, और साथ साथ ही डेयरी वालों को भी पता चल सके या जो पशु उत्पादक करने वाले हैं उनको भी पता चल सके कि हम घर पे भी खाद कैसे बना सकते हैं। एक वर्मी कंपोस्ट खाद एक सबसे बेहतरीन जैविक खाद है। अगर किसान अगर मेहनत सच्ची मेहनत करता है, और एक बेड के लिए उसे वीक में आधा घंटा देना होता है, एक सिंपल सा तरीका होता है।
1: बेड आपने बात की तो बेड से तात्पर्य है कि बेड क्या है, किस प्रकार उसकी संरचना होती है।
0: वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि जब गोबर खाद के उकड़े किसान लगाने की आदत रहती है कि भाई खेत के जैसे ही पशु गोबर करता है तो उसके पास के स्थान पे गोबर का ढेर लगा देता है,
1: बिल्कुल
0: और वो खाद सड़ नहीं पाती है, उससे जमीन में वापस जब खेत में डालता है तो खरपतवार उगती है। तो उसको सड़ाने के लिए क्या करते हैं कि केंचुओं के माध्यम से उसे सड़ाया जाता है, तो एक इस प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें लंबाई उसकी हम चाहे जितनी रख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है उसे 10 फीट या 12 फीट उसकी लंबाई होती है, 2.5 से 3 फीट उसकी चौड़ाई होती है, जिससे आदमी आसानी से काम कर सके, और हाइट उसकी 1.5 से 2 फीट की होती है। केंचुआ क्या करता है कि 4 उंगली तक नीचे जाता है और वो खाद खाता है, गोबर की खाद को खाता है, और वापस एकदम चाय पत्ती के दाने की तरह उस खाद को बना देता है। और ये प्रोसेस मतलब 40 से 45 दिन का 50 दिन का होता है, और एक बेड में जो ये 10 बाई 3 की जो बेड होती है इसमें प्रॉपर खाद ये 50-60 दिन में खाद तैयार हो जाती है। तो ये बेहतरीन खाद होती है। ये मैंने डेयरी में 200 बेड लगा के स्थापना की, जो नागौर में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। नागौर जिले में इतनी बड़ी मात्रा में खाद नहीं थी, जो मैंने लगा के किसानों के सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल रखा कि भाई अगर मैं बनिया होके जैन होके अगर ये खाद बना सकता हूं तो आप भी खाद बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अच्छी बात है, बताइए आपने आपकी मेहनत थी। तो जो ये वर्मी खाद है आप बता रहे नाफेड कंपोज या बायोगैस के बारे में भी बात की, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं पेट्रोल डीजल की जो कमी देखने को मिलेगी, और बायोगैस की जो आप बात कर रहे हैं तो वो भी गाड़ियों में या कहीं भी उसका यूज उपयोग, घरेलू उपयोग या और भी उपयोग के लिए।
0: नहीं, इसके लिए हमने क्या किया कि हमने इंडियन ऑयल के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम प्रतिदिन 10 से 15 हजार पशुओं का गोबर कलेक्शन करेंगे

0: और उससे जो गैस निकलेगी उसे हम इंडियन ऑयल को बेचेंगे, जो गाड़ियों में कंप्रेस बायोगैस के नाम से बिकेगा या कंप्रेस नेचुरल गैस के नाम से
1: जी
0: बिकेगा,
1: जी
0: जो पेट्रोल पंप पे यूनिट लगेगा और गाड़ियों में गैस, जैसे पेट्रोल के साथ साथ आजकल सब में सीएनजी किट लगा हुआ आता है, तो उसी के माध्यम से हमारा ये गैस बिकेगा। और वापिस जो खाद होगा वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाद होगा, जो हम बल्क क्वांटिटी में किसानों के साथ और बहुत ही कम रेट में पहुंचा सकेंगे, जिससे किसानों को उस खाद की उपयोगिता के बारे में पता चलेगा।
1: अभी जो SRM ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइजर जो चला रहे हैं, उसमें जो पैकिंग है या किसानों को खाद का लेने का देने का तरीका क्या होगा?
0: ये जो SRM ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये हमने एक सोच के साथ शुरू किया था कि हम इस खाद को, जैसे हमारे पास हम 15,000 पशुओं का गोबर खरीदते हैं, तो
1: जी
0: इस 15,000 पशुओं के गोबर का रोज का 40 टन 50 टन हमारे पास गोबर होगा, तो उस गोबर को एक साथ कहाँ रखेंगे, क्योंकि हम गोबर खाद है जो हम 6 महीने में एक बार किसान काम में लेता है। तो उसके लिए हमने इसका एक अल्टरनेट विकल्प बनाया कि इस खाद को हम और वैल्यू एडिड करके और चीजें मिक्स करके इसे एक नया रूप दें।
1: क्या क्या
0: तो
1: चीजें हैं जो आप खाद में है
0: हाँ,
1: एडिट करते हैं?
0: इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में एक प्रोम खाद के बारे में बताया गया,
1: जी
0: फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मेन्योर।
1: जी
0: इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस की मात्रा के अवेबिलिटी को, और जैविक खाद, ये जो कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, इसके मिश्रण से तैयार की जाती है। तो हमने इसको वैल्यू एडेड करने के लिए, इस जो सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट की खाद या बायोगैस की सलरी है, इसके अंदर हमने रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, सिलिका और कुछ PSB बैक्टीरियाज और कुछ ट्राइकोडर्मा फंगस, जो जमीन में कोई रोग ना लगे, इन सब चीज़ों को मिक्सर करके एक दाना बनाया है, जो आप कह सकते हैं कि DAP खाद का विकल्प है।
1: जी
0: अगर किसान इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है, 1 एकड़ में हम 1 50 किलो का बैग रिकमेंड करते हैं सिंचित एरिया में, और असिंचित एरिया में 1 हेक्टेयर में 1 बैग का रिकमेंड करते हैं। अगर और जो सब्जियां उगाते हैं उसके लिए हम प्रति बीघा में 1 बैग का रिकमेंड करते हैं।
1: तो बेग की 50 किलो या खुला किसी किसान को कम या ज्यादा घर चाहिए या
0: हाँ,
1: बागवानी में चाहिए, तो उसके लिए भी विकल्प कुछ?
0: हमने किसान के लिए 50 किलो की पैकिंग लगाई रखी है, जो 1200 रुपये प्रति बैग है, और छोटे जो बगीचे वाले हैं तो उनके लिए हमने 5 किलो की पैकिंग भी रखी है। तो ये अलग अलग पैकिंग किसानों की सुविधा के लिए हमने रखी है।
1: बिल्कुल मयूर जी, जैन साहब, यदि किसान अपने घर पर लगाना चाहे, यानी अपने खेत पर लगाना चाहे अपने खुद के, तो उसमें आपका कुछ विशेष सहयोग?
0: अब जैसे कि मैं किसान के लिए हर वक्त तैयार हूँ, अगर किसान चाहता है जैविक करना तो उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी सोच होनी चाहिए करने की। तो उसके लिए ऐसा है कि अगर किसान को चाहिए कि मुझे कम पैसे में पड़े, तो कम पैसे में जब पड़ेगा, एक तो पहले सबसे पहले वह कंपोस्ट खाद घर पे तैयार करे,
1: जी
0: और उसके बाद रही बात अगर उसे DAP घर पे बनाना है, तो उसके लिए उसको किसानों का एक जुट बनाना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रोज रॉक फॉस्फेट वगैरह ये माइन से आते हैं, तो उसके लिए बड़ा ट्रक खरीदना पड़ता है, 40 टन 50 टन। तो किसान का अच्छा सामाजिक सहयोग, जैसे कोई FPO हो गया, तो बड़े बड़े FPO हैं जो इस तरह के काम कर भी रहे हैं, और मेरे पास आते हैं तो मैं छोटी पैकिंग किसान को अवेलेबिलिटी करवा ही रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जब मेरा बायोगैस का प्रोजेक्ट लगेगा, तब मैं किसान को ट्रॉली के माध्यम से खाद, ये रॉक फॉस्फेट, ये सारी चीजें मिक्स करके दूंगा, उसे बैग में भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मेरे आसपास के नागौर के किसान भाइयों को आने वाले फ्यूचर में, मतलब बैग से खाद खरीदने की जरूरत नहीं, मैं ट्रॉली के माध्यम से दूंगा और वो खेत में भरपूर मात्रा में डाल सकते हैं, जो 1% भी नुकसानदायक नहीं है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। आज के जमाने में जो जहरीली खाते हैं, जो जहर है छिड़का जा रहा है किसानों के द्वारा, उनका एक विकल्प है जैविक खाद, और जो जैविक आप यूनिट लगा रहे हैं और किसानों से उपलब्ध करा रहे हैं, भविष्य में जो किसान खेती कर रहे हैं उनके लिए विशेष संदेश आपका?
0: किसान भाइयों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि आप आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित, बेहतरीन और बीमारियों से मुक्त रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये अन्नदाता हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जैविक की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो। अगर आपके पास बड़ी जमीन है तो छोटी से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे भारत की जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, वो खेती की ओर ज्यादा से ज्यादा रुझान करे और एक सशक्त भारत बनाए, जो विकसित भारत बनाए।
1: तो आज आप पधारे स्टूडियो में, गणों आपको धन्यवाद।
2: देखो भाया, कितनी बढ़िया जानकारी दी ही मयूर जैन साहब, अरे वो बात करी ही दिनेश भाई, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट। भाया देखो, जैविक खेती है भाई, अपने अपनानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट अपनानी चाहिए, गोबर की खाद अपनानी चाहिए, क्योंकि रासायनिक खाद है वे कई तरह की भयानक बीमारियां वे जावे है। तो आपने बे बीमारियों बचनो है और गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, आपने अपनानी है। मैं देखो बातें चीता जारी रहे ही बंतल वेगी ही, पर अब आपने अडीक है कि भाई कुलदीप भाई कोई चौखो मीठो गीत है सुनाई कौन सुनाई, मनोरंजन करी कौन करी। तो आप री अडीक नाठी देवा विराम और सुना सा ओ चंपा मिथिली आवाज में ओ गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: देखो भैया, ब्रेक को पहले आप सुनियो हो चंपा में तेरी आवाज में चोखो मिठो गीत, राजस्थान की संस्कृति ने समर्पित हो चोखो मिठो गीत। भैया देखो, मिश्रित खेती आप सुनियो वेला के भाई, मिश्रित फसल उत्पादन या मिश्रित खेती कहीं हुआ करे है। भैया देखो, एक खेत्र बाइटे एक ही मौसम में दो या दो अधिक फसलों ने अपा साथे बोवा, ताकि आपने फसलों उत्पादन आपने बढ़िया मिल सके है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह बढ़िया रहे बिना ही आप मिश्रित फसलों उत्पादन या मिश्रित खेती किया कर रहा। भाई देखो, मिश्रित जो खेती है वह आम तौर पर यान का क्षेत्र में करा हाँ, बटे बाढ़ है, सूखा है, पाड़ो है, यान की मौसम की जिकी प्रतिकूल अवस्था की संभावना ज़्यादा रहे है, बटे आप मिश्रित खेती करिया करा हाँ। बया देखो, मिश्रित खेती ले मायने संपूर्ण फसल नष्ट कोनी हुए है। अगर आप दो फसल साथे बोवा या तीन फसल साथे बोवा, तो एक अगर मौसम की प्रतिकूल अवस्थाओं अगर खराब हो जावे एक फसल, तो दूसरी आपने बढ़िया उत्पादन दे सके है। ये वास्ते आप मिश्रित खेती करिया करा हाँ। मिश्रित खेती रहा जिका उदाहरण की बात करा भाया, मिश्रित खेती में बाजरा है, बाजरा के सागे मोट है और सागे सागे मूंग भी बो सका हाँ। ज्वार रे सागे आपा मूंग है, चावला की खेती कर सका हाँ। और गेहूं के सागे आपा चना की खेती कर सका हाँ। और जटे मक्का की खेती हुआ करे भाया, बिंग के सागे उड़द है और चावला की खेती कर सका हाँ। सरसों के सागे चना की खेती कर सका हाँ। तारा मीरा रे सागे चना की खेती कर सका हाँ। और कपास से सागे आपा उड़द या चावला की खेती कर सका हाँ। और भाया देखो, ए दलहनी फसलों मिश्रण है गेहूं के सागे जो और गेहूं के सागे सरसों, जो के सागे सरसों और गेहूं के सागे अलसी और कपास के सागे आपा तिल की खेती कर सका हाँ। दलहनी फसलों की बात करा तो अरहर के सागे मूंगफली और अरहर के सागे आपा उड़द भी ले सका हाँ, और अरहर के सागे आपा मूंग भी ले सका हाँ। भाया देखो, मिश्रित फसल है इन आज की मिश्रित खेती की बात करा, मिश्रित खेती के मायने फसल के बीजा ने एक साथ आपा मिलाया करा हाँ, और बाद मायने इन्हें पंक्तियां में बो देवा हाँ, और आपा इन्हें छिटक के छिड़क भी आपा इन छिड़क कर और मिश्रित खेती भी आपा कर सका हाँ। ई विधि मायने कृषि यंत्रालो जो को प्रयोग है वो कटाई रे सागे सागे कटाई रे समय में आपने कठिनाई आ सके है, पर फसल रे पकना रे समय और समान जान गेहूं है, गेहूं के सागे चनो और इनके सागे सागे अरहर के सागे आपा ज्वार भी बो सका हाँ। भाया देखो, आ ही मिश्रित खेती री बात, और अबे सुना एक चोखो मीठो और गीत।

ओहो राजस्थान री संस्कृति ने समर्पित चोखू मिठो गीत घुमेरदार लंचो बया आवाज ही सीमा मिश्रा री। और अब घड़ी का नी जोवा तो आज रो खेती बाड़ी प्रोग्राम रो टेम 28 ताई आपरे कुलदीप भाई ने दिलाओ सीख भैर मिलाना। राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीदों को पंख देने, सपनों को हकीकत में बदलने और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का नाम है युवाणी, जहां बात होगी युवा जोश की, युवा सोच की, सपनों की और उन सपनों को पूरा करने के जुनून की। और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त नेहा नारायण सोनी। तो आज की शुरुआत करते हैं साथियों एक छोटी सी शायरी के साथ कि रास्ते मुश्किल है तो क्या, हौसले कम नहीं होने चाहिए, मंजिल दूर है तो क्या, कदम थमने नहीं चाहिए, जो गिरकर फिर से उठने का हुनर रखता है वही इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, बात करेंगे आज के बाद टॉपिक की जो कि है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के महत्व, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। पर्यटन केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना नहीं है, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैलियों को करीब से समझने का माध्यम भी है। साथियों भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में पर्यटन का विशेष महत्व है। यहाँ हिमालय से लेकर समुद्र तटों तक, ऐतिहासिक किलों से लेकर प्राचीन मंदिरों तक और रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक अनेक आकर्षण मौजूद है। दोस्तों इस टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, जो कि हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। दोस्तों, पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। स्थानीय हस्तशिल्प, लोक कला, खान पान और संस्कृति को बढ़ावा देने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि बढ़ते पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, इसीलिए हमें जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को अपनाना चाहिए। प्रकृति संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं का सम्मान भी हमें बिल्कुल साथियों करना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस हमें यह संदेश देता है कि यात्रा केवल नई जगहों को देखने का माध्यम नहीं, बल्कि दुनिया को समझने और उससे जुड़ने का अवसर भी है। इसलिए घूमिए, सीखिए, संस्कृति को समझिए और प्रकृति को संवारिए। यही है जिम्मेदार पर्यटन की पहचान। दोस्तों, अब बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर में करियर और ट्रैवल ब्लॉगिंग के क्रेज के बारे में। तो आज के समय में पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए करियर का एक आकर्षक और तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन गया है। यात्रा के प्रति बढ़ती रुचि और डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने इस क्षेत्र में रोजगार के कई नए अवसर पैदा किए हैं। टूर गाइड, ट्रैवल एजेंट, टूर मैनेजर, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल कंसल्टेंट, एयरलाइन और एविएशन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तथा पर्यटन से जुड़े सरकारी और निजी संस्थानों में युवाओं के लिए अनेक विकल्प भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे टूरिज्म सेक्टर में करियर और ट्रैवल ब्लॉगिंग के क्रेज के बारे में। तो आज के समय में पर्यटन क्षेत्र युवाओं के लिए करियर का एक आकर्षक और तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन गया है। यात्रा के प्रति बढ़ती रुचि और डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही ट्रैवल ब्लॉगिंग का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपनी यात्राओं के अनुभव दुनिया के सामने साझा करने का अवसर दिया है। ट्रैवल ब्लॉगर अपने ब्लॉग, वीडियो, रील्स और तस्वीरों के माध्यम से नई जगहों, स्थानीय खानपान, संस्कृति, रोमांचक गतिविधियों का और यात्रा संबंधी सुझावों की जानकारी देते हैं। ट्रैवल ब्लॉगिंग केवल घूमने और तस्वीरें खींचने तक सीमित नहीं है, इसमें कंटेंट राइटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी कौशल भी महत्वपूर्ण है। निरंतर मेहनत, रचनात्मकता और विश्वसनीय जानकारी के माध्यम से इसे एक पेशे के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इस तरह पर्यटन और डिजिटल मीडिया का संगम युवाओं के लिए सीखने, कमाने और अपने जुनून को करियर में बदलने के नए रास्ते खोल रहा है। यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं कि यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले कि यात्रा की योजना पहले बनाएं, यानी कि जाने से पहले रास्ते, मौसम, ठहरने की जगह और ज़रूरी संपर्कों की जानकारी रखें। अगला है, ज़रूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें, यानी कि पहचान पत्र, टिकट, पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को की डिजिटल और प्रिंट कॉपी साथ रखें। अगला है, सामान का ध्यान रखें, कीमती सामान और ज़रूरी चीज़ों को सुरक्षित रखें और अनजान व्यक्ति को अपना सामान न सौंपें। अगला है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी कि पर्याप्त पानी पिएं, स्वच्छ भोजन करें और ज़रूरत की दवाइयां साथ रखें। अगला है, स्थानीय नियमों का पालन करें, यातायात नियमों, स्थानीय कानूनों और पर्यटन स्थलों के दिशा निर्देशों का भी सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। आपातकालीन संपर्क साथ रखें, यानी कि परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी यात्रा की जानकारी दें और स्थानीय आपातकालीन नंबर सेवा साथ रखें या सेव रखें। अगला है, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, यानी कि कूड़ा ना फैलाएं, प्लास्टिक का अनावश्यक इस्तेमाल न करें और प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान न पहुंचाएं। यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मेरा जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, आप कैसे हैं? भाई मैं बहुत ही मस्त हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, है ना बच्चों? आज रविवार है, आज हमारी स्कूल की छुट्टी भी थी। खूब मौज मस्ती करी हम लोगों ने, है ना, काफ़ी मौज मस्ती करी, शरारतें करी, खेले कूदे, है ना, और थोड़ा थोड़ा घर का काम भी किया ना, मम्मी को हेल्प भी करवाई, बिल्कुल करवाई। बच्चों आज हम बातचीत करेंगे कि भाई हम छोटे हैं तो क्या होगा, है ना, घर के छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मी की मदद तो हम करवा ही सकते हैं, है ना दोस्तों? भाई बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि मम्मी छोटे छोटे काम के लिए हमें बोलती है और हम लोग मना कर देते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपनी एज के अनुसार, हमारी उम्र के अनुसार, हमें छोटे मोटे कार्यों में मम्मी की मदद करवानी चाहिए, है ना। जैसे कितनी बार होता है कि जैसे हम बहुत से तरीके हैं इसकी मदद करवाने के, है ना। छोटे अगर बच्चे हैं तो वो ये कर सकते हैं कि अपने जहाँ वो खेल रहे हैं, उनका खेलने का जो रूम है वहाँ पे खिलौने बिखर रहे हैं तो खिलौनों को वो तरीके से रख सकते हैं समेट के, है ना, कमरा साफ रख सकते हैं। और उससे बड़े हैं तो मम्मी के लिए जो है, अगर मम्मी कुछ चीज़ मंगवा रही है तो वो लाना ले जाना, इस तरह की जो छोटे छोटे कार्य हैं उसमें मदद कर सकते हैं, है ना। पानी की बोतल रखना, पानी की बोतल पकड़ाना, खाना खा रहे हैं तो मेज की टेबल को सजाना तरीके से, वहाँ पे ग्लास चम्मच वगैरह रखना, है ना, ये काम हम कर सकते हैं। बच्चों अगर हम ये कहते हैं ना कि भाई लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ तो वैसे भी छोटी सी उम्र से अपनी मम्मी की मदद करने लग जाती है, है ना। और अगर लड़के हैं तो वो हमें चाहिए कि हम बाहर के काम, अगर मम्मी कुछ कह रही है तो बाहर के काम में भी उनकी मदद करें, और घर के काम में भी अपनी बहन के साथ मिलजुल कर हम छोटे मोटे काम निपटा सकते हैं, जैसे पौधे में पानी डालना, है ना, भारी सामान और कांच के सामान को हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि काम मदद करने की बजाय नुकसान ना हो जाए बच्चों, है ना। इसके अलावा हमें चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की देख रेख में ही हमें संपन्न करने चाहिए, है ना। जैसे अगर मम्मी जो है शाम को खाने की तैयारी कर रही है तो हमें चाहिए कि कोई सब्जी है तो उसको साफ कर दें, हैं, कोई खाना खा रहा है तो उन्हें खाना खिला दें, मम्मी ने अगर कपड़े सुखाए हैं तो कपड़े लाके हम उसको तय करके समेट के अच्छे से रख दें, मम्मी भी खुश और हम भी खुश, है ना। क्योंकि काम करेंगे तो मम्मी हमें बहुत प्यार करेगी, कहते हैं ना कि काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है, तो हम काम करेंगे तो मम्मी को बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों। और इसके कई फायदे भी होते हैं, घर के कामकाज जो है वो हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल और दैनिक जीवन कौशल सिखाने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना कहे आप जो है अपनी उम्र के अनुसार छोटे छोटे कार्य करें। ये कार्य हमें, यूँ कहूँ कि आपको संवाद करना, सहयोग करना और टीम के रूप में काम करना सिखाते हैं। घर के कामों में हाथ बटाने से परिवार को बेहतर ढंग से काम करने और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि मम्मी अकेली सुबह उठती है तब से लेकर वो दिन भर घर के काम करती रहती है, बस चलती रहती है चलती रहती है, बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती है। तो अगर यही काम हम घर में, अगर चार जने हैं या पाँच जने हैं, जितने भी हम घर में सदस्य हैं परिवार में, अगर एक एक काम हम कर लें, है ना, तो बताइए बच्चों कितना जल्दी वो काम फ्री हो जाएगा और परिवार में जो देखते हैं शांति का माहौल रहेगा, है ना, तनाव कम हो जाएगा मम्मी का और मम्मी अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाएगी। एक एक काम अगर हम कर लें, ज़्यादा नहीं, अगर बांट लें एक एक काम तो वो जल्दी हो जाएगा काम, वरना उसी काम को करने में मम्मी दिन भर जो है व्यस्त रहेगी और शाम को थक सी जाएगी और अपने लिए तो बिल्कुल समय निकाल ही, अपने आप को तो भूल ही जाएगी वो। तो बस बच्चों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जैसे भी हो सके अपने परिवार में, यूँ कहें कि शांति का माहौल रखने के लिए, तनाव कम करने के लिए, अपनी मम्मी की मदद करने के लिए, जैसा भी जो भी मम्मी कहे आप उन काम को करिए, है ना। और मनोविज्ञानी का कहना भी है कि अगर जो बच्चे काम करते हैं ना, जो किसी की हेल्प करते हैं, है ना, वो बच्चे बहुत ही खुश रहते हैं अपने जीवन में। भाई हम भी देखते हैं ना, भाई हमने अगर सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी काम नहीं किया, बस बैठे रहे या मोबाइल देखते रहे या कुछ गेम खेलते रहे, तो खुद को थोड़ा सा फील होता है कि आज का दिन तो मेरा ऐसे ही गया, मैंने कुछ भी काम नहीं किया,
तो बच्चों हमें अपने समय का सदुपयोग करना है और अपने यूं के परिवार में खुशहाली बांटनी है ना। और इसके साथ ही बच्चों आगे चलते हैं और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

0: हम
1: देखो बच्चों, ये हमने ये गीत सुना। इस गीत के अंदर काफ़ी सारी पहेलियाँ थी, उन पहेलियों को सुलझाना है ना, ये एक यूँ कहिए कि शातिर दिमाग या बहुत ही समझदारी का काम है। तो ये बहुत ही सुंदर एक पहेलियाँ गीत के रूप में पहेलियाँ थी, और ये पहेलियाँ पूछते पूछते ही हम घर का काम भी काफ़ी निपटा सकते हैं। भाई कभी हम खेल भी खेल सकते हैं कि ये गाना जब तक कंप्लीट हो, ये इस काम को हमें पूरा अंजाम देना है ना। और इसके साथ साथ ही बच्चों हम बात करेंगे कि जब काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारा स्वस्थ शरीर। जब शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी, तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा बच्चों। तो उसके लिए हमें चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शरीर की सफाई और सेहत पर ध्यान देना होगा। इसके लिए बच्चों हमें संतुलित और फाइबर युक्त आहार लेना होता है, यानी कहते हैं कि विटामिन युक्त या यूँ कहें कि पौष्टिक भोजन लेना होता है। इसके अलावा समय पर सोना, समय पर उठना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम करना, तभी जाकर हम स्वस्थ रह पाते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं स्वस्थ रहें, और इसके सफाई भी, हमारे शरीर की सफाई पे भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, यानी कि नियमित स्नान करें, शरीर के प्रत्येक अंग को अच्छे से साबुन से धोएं, नाखून नियमित काटें, बाल बढ़ने पर बाल तुरंत कटवाएं, और खाना खाने से पहले बच्चों हमें हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हमें अच्छे से साबुन से हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि कितनी बार नाखूनों में मेल रह जाता है बच्चों, गंदगी रह जाती है। तो खाना खाने, कोई भी चीज़ हो, खाने से पहले हमें हाथ धो लेना चाहिए, है ना, ताकि नाखूनों की गंदगी हमारे पेट में ना पहुँचे। इसके अलावा हमें साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, है ना, और पर्याप्त पानी, यानी कि 8 से 10 गिलास तक पानी हमें दिन में पी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है 60 से 70% तक पानी से ही बना हुआ है, पानी की। तो हमें चाहिए कि 8 से 10 गिलास की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। सुबह उठते ही हमें चाहिए कि हम गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के वो खाली पेट पिए, उससे बच्चों कहते हैं कि ताजगी भी आती है और शरीर में स्फूर्ति भी रहती है। नियमित शारीरिक गतिविधि भी करना चाहिए, यानी कि व्यायाम कर लेना चाहिए, और अगर मॉर्निंग वॉक हो रही है आपको, अगर स्कूल का टाइम सुबह का है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, बस यही है, सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम को हमें ज़रूर वॉक कर लेना चाहिए। इससे बच्चों तनाव मुक्त जीवन रहेगा हमारा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और यूँ कहें कि हम जो दिनचर्या है वो हमारी ठीक से व्यतीत कर पाएंगे हम लोग।

इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं हमारी बातचीत पर। आप जानते हैं ना बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम में हम एक स्तंभ रखते हैं कहानी का, क्योंकि हम बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छी लगती है ना। सुनेंगे आप कहानी? बिल्कुल, मैं आपको सुनवाती हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। बच्चों, एक सोनू नाम का बालक था, बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा बच्चा था। वो जो है अपनी गायें चराने के लिए जंगल में जाता रोज और अपनी गायों को चरा के लेके आता। एक दिन की बात है बच्चों, वो जंगल में अपनी गायें चरा रहा था और पेड़ के नीचे छांव में बैठकर आराम कर रहा था, गायें घास खा रही थी। हुआ यूँ कि उसने अचानक देखा कि जंगल की तरफ से एक शेर आ रहा है, गांव की तरफ आ रहा था वो। बच्चे ने देखा कि उधर सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सोनू ने देखा कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अगर ये शेर आ गया तो बच्चों को खा जाएगा, बच्चों को शिकार कर लेगा ये। तो उसने बड़े साहस और हिम्मत से काम लिया। उसने तुरंत एक पास में जो है बड़ा सारा गट्ठर लकड़ी का पड़ा था वो उठाया उसने, और वहाँ एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर लकड़ी के गट्ठर को जोर जोर से पीटने लगा और उसकी आवाज़ करने लगा। उस आवाज़ से वो शेर जो है डर गया। और सोनू का मकसद था उस बच्चे का कि किसी भी तरह करके इस शेर का जो है ध्यान मुझे उन बच्चों से हटाना है, अगर मैं आवाज़ करूंगा तो इसका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा और बच्चे बच जाएंगे। उसने यही सोच के जोर जोर से पत्थर पे उस लकड़ी के टुकड़े को मारना शुरू किया और उसकी आवाज़ आने लगी।

इस आवाज को सुनकर शेर जो है डर गया, घबरा गया और उसने वापस वो जंगल की तरफ अपना मुंह कर लिया। इस तरह से सोनू ने साहस दिखाया उस समय, और धैर्य से उसने साहस दिखाते हुए ये एक बहुत ही अच्छा सा काम किया। तभी मतलब शेर जो है वापस जंगल की तरफ चला गया और वो बच्चों की जान बच गई। इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमें साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, है ना। तो बच्चों ये हुई एक छोटी सी कहानी। कहानी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। बच्चों ये आधुनिक भारत की महानतम हस्तियों में से एक माने जाते हैं। वह एक कवि, लेखक, विचारक, दार्शनिक और गीतकार और चित्रकार थे, जिन्होंने अपने पश्चिमी विश्व में भारतीय संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व को उनकी सबसे बड़ी देन उनकी शांति, अहिंसा और अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा है। बच्चों इनका जन्म कोलकाता के जोड़ो साको ठाकुरबाड़ी में 7 मई 1861 को हुआ था, और इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम शारदा देवी था। ये जो है ना बच्चों, ये 13 भाई बहन थे, उनमें से ये सबसे छोटे थे, अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी ये। ये बचपन से ही बैरिस्टर बनना चाहते थे। इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की और उन्होंने जो है ये देखे कि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए राष्ट्रीय गान की रचना भी की, है ना बच्चों। और 1915 में जॉर्ज पंचम द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। लेकिन बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के कारण इन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी, और इन्होंने 2200 करीब गीत भी लिखे थे। इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव की उपाधि की बात करते हैं ना बच्चों, तो इन्हें महात्मा गांधी ने ये उपाधि प्रदान की थी, गुरुदेव की उपाधि। और 1913 में इन्हें अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बच्चों ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में 2021 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया था। तो ये कहेंगे कि इन्होंने जो है अपनी देश की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा के लिए और युवा बच्चों को संस्कृति और यूँ कहें कि लेखन कला इसमें आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत से प्रयास किए। तो बच्चों हमें चाहिए कि इनके जो बताए मार्ग हैं उन पर हम चलें और इनकी अवधारणा को हम जो कहे कहते ना कि फॉलो करें नियमितता से, उनकी जो उन्होंने नियम बनाए या जो उन्होंने जिन जिन चीज़ों में अपना यूँ कहें कि छाप छोड़ी, वो चीज़ें हमें उनका यूँ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें भी इसी तरह से आगे बढ़ना है। रविंद्रनाथ जी टैगोर ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया है उनमें जो अच्छाई थी उनकी अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों ये हुई रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बातचीत, और इसके साथ ही आगे चलते हैं, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

इसके साथ ही बच्चों हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि भाई हमें चाहिए कि घर का माहौल अच्छा रखने के लिए हम परिवार में सभी जने एक साथ बैठकर एक समय तो अवश्य खाना खाएं। सुबह नहीं हो पा रहा है तो शाम को सभी जने एक साथ मिलकर खाना खाएं। इससे क्या होता है कि हमारी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम है या बातचीत है वो आसानी से हो जाती है। बच्चों के साथ सार्थक और खुली बातचीत करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा कौशल और मानसिक विकास जो है उनका बेहतर ढंग से हो पाते हैं। देखिए, इसके लिए हमें करना होगा कि खुले प्रश्न पूछें बच्चों से कि भाई आपका स्कूल कैसा चल रहा है। पूछने के बजाय उन्हें हम स्कूल के बारे में अच्छा सा, भाई तुम्हारा कोई नया दोस्त कौन बना है, तुम्हें स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, स्कूल का वातावरण कैसा है, इस तरह से हम टेबल पर जब खाना खा रहे होते हैं तो बच्चे से बातचीत भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा बोलता है तो हमें चाहिए कि उनकी बातचीत भी हम थोड़ी ढंग से सुने, उन पे थोड़ा ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम कुछ और काम कर रहे हैं और बच्चा कुछ बोलते जा रहे हैं, हम हाँ हाँ करते जा रहे हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर हमारा छोटा भाई या बहन भी हमारे घर में कोई है, वो हमसे बातचीत कर रहा है, तो हमें उसकी बात को अच्छे से सुनना चाहिए, है ना। और इसके साथ ही हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बिना डरे अपनी बात कहने की अवसर देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, है ना। और दैनिक अभ्यास यानी हमारी जो पढ़ाई के लिए हम कहेंगे कि रोज जो है थोड़ा थोड़ा जो भी कठिन विषय हैं जो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं उन पे थोड़ा थोड़ा निरंतर अभ्यास करते रहें, है ना। और इसके अलावा हमें चाहिए कि हमारे जो भी छोटे भाई बहन हैं, या यूँ कहें कि हम पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि जो भी उनके छोटे बच्चे घर में हैं उनके साथ कुछ समय वो उनके साथ जरूर बिताएं, है ना, या उनके साथ खेल खेलें या उनसे बातचीत करें या और भी जैसे भी हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ थोड़ा सा समय जो है उनको दें ताकि बच्चे और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप उनके लिए कुछ अच्छा सा कर सकें, है ना बच्चों। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें और उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए उन्हें समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ बैठ के उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनका समाधान करें, है ना। ये तो हुई बातचीत, और बातचीत के साथ ही हमारा जो हम घड़ी की तरफ देखते हैं बच्चों, तो घड़ी जो है हमारे इस कार्यक्रम को यहीं समाप्ति की ओर इशारा कर रही है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप अपने कार्य को छोटा ही क्यों ना हो या धीरे ही क्यों ना हो, लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। और करते हैं बच्चों आपसे जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बालवाड़ी कार्यक्रम FM बैंड 103.7 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ

0: करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वॉश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमों को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आशिकी फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू की। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है माटी के स्वर।

अभी आप सुन रहे थे माटी के स्वर FM बैंड 103.7 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सारी फिक्र करना। वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है।
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
0: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
2: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: पापा की जमा पूंजी, उनकी सीख
0: और हमेशा हमारी फिक्र करना। वैसे उनकी एक जमा पूंजी बैंक में भी है।
1: पर क्लेम करना मुश्किल होगा।
0: अब और भी आसान हो गया है। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में सेटलमेंट पाओ और नॉमिनेशन से क्लेम सेटलमेंट बने और भी आसान।
2: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा, इसने विश्व को भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का परिचय दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को साबरमती से रवाना किया, कहा पिछले 12 वर्षों में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, राजस्थान में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, सरकारी स्मारकों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का जिक्र करते हुए कहा है कि आज भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में उन्होंने वर्ष 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा।
6: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sc.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील भी की।
6: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
5: प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की

0: चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए सस्ते और स्थानीय पौष्टिक खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री ने आने वाले पर्वों और त्योहारों का भी जिक्र किया। इधर प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। जिला मुख्यालयों और विभिन्न शहरों तथा कस्बों में मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर जयपुर नगर निगम चुनावों में निर्वाचित भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने सभी पार्षदों से संवाद भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। श्री शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया। उन्होंने साबरमती स्टेशन से देश की पहली LNG चालित ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। गृहमंत्री ने कहा कि रेलवे विद्युतीकरण 2010-2011 में महज 75 किलोमीटर प्रति वर्ष था, जो बढ़कर लगभग 7,188 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया है।
2: LNG से चलने वाली ट्रेन का लोकार्पण हुआ है, जो आने वाले दिनों में बहुत पर्यावरण की सुविधा का काम करेगा। नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब JNPT मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: कार्यक्रम के दौरान लोकोमोटिव रखरखाव शेड, स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन और स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि धोरों की धरती में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। श्री चौधरी आज बालोतरा जिले के गुढ़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक और प्रयोगशाला भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना से पश्चिमी राजस्थान की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बाजरा उत्पादन, नई कृषि तकनीक और नई तथा उन्नत किस्मों पर अनुसंधान को गति मिलेगी। इससे किसानों को सीधा फायदा होगा। इस अवसर पर आयोजित बाजरा कृषक सम्मेलन 2026 और कृषि प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर मंथन होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब की फिरोजपुर दौरे

0: कि अगर हम पूरी सामूहिकता के साथ इस नशा के खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इस नशे के खिलाफ जो हमारी सरकार केंद्र की काम कर रही है, हम पंजाब के अंदर भी नशा मुक्त कर।
1: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस साल विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए पर्यटन को एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। श्री शेखावत ने पर्यटन के लिए भारत को विश्व का पसंदीदा देश बनाने का संकल्प मजबूत करने की अपील की। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राज्य भर में राजकीय संग्रहालय में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। सवाईमाधोपुर में पर्यटन विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन पर देशी विदेशी पर्यटकों का परंपरागत रूप से तिलक लगाकर और माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर के संग्रहालय और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भी पर्यटकों को निःशुल्क भ्रमण कराया गया। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आज विकसित भारत जन सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कई गतिविधियां। गुंबद पर स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के अंत में वहां मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहीं झुंझुनू जिले में खेतड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय में आयोजित सेवा सेतु शिविर का जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गर्ग ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। पाली में भी अभियान के तहत पोषण और पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी, रंगोली तथा चित्रकला सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ का टॉलरेंस नीति का परिचय दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को साबरमती से रवाना किया। कहा, पिछले 12 वर्षों में रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन। स्थान में बाजरा केवल एक फसल नहीं बल्कि किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकारी स्मारकों पर सैलानियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष गोयल ने तैयार किया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुजरात के वडनगर से रवाना हुई बाइक रैली के कोटपुतली पहुंचने पर इसका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नारेहड़ा गौशाला में गौ सेवा कार्यक्रम और गोगाजी मंदिर में सेवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आमजन की सुविधा और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से नगर परिषद बहरोड में 24 से 26 सितंबर तक स्वच्छ बहरोड स्वस्थ बहरोड थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर परिषद कुमारी भाजित कर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 89 टन कचरा ऑटो टिपर और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से डंपिंग यार्ड पहुंचाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी जिले में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विकसित भारत जनसेवा अभियान 2026 के तहत 26 से 28 सितम्बर तक गिरदावर सर्कल मुख्यालयों पर सेवा सेतु अभियान के शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को एक ही जगह पर 22 विभागों की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वयं सहायता समूहों का गठन और बैंक खाते खुलवाने, स्वच्छता कार्य, वन विभाग की सेवाएं, मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल, टीबी स्क्रीनिंग, पशु स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। विकसित भारत जनसेवा अभियान

0: के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने दीप प्रज्वलित कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और उन्नति की सामूहिक मंगल कामना की। युवाओं से संवाद को लेकर जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोहन सिंह नरूका ने जिला स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद नितिन नवीन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने युवाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ युवाओं से नशे सहित विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जिले में सड़क तंत्र को मजबूत करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 166 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए सड़क विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जेपी यादव के अनुसार बजट घोषणा 2026-27 के तहत 90 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से करीब 71 किलोमीटर लंबाई के 9 सड़क कार्य शुरू हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में लक्ष्य से 38.54% अधिक पौधरोपण किया जा चुका है और अब तक 17 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। विराटनगर उपखंड के अंतिला में 20 हेक्टेयर चारागाह भूमि पर विकसित उद्यान में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए भी जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर अवैध कट्स बंद कराने, ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रसद विभाग की टीम ने जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण किया। गैस सिलेंडरों के रखरखाव, अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। निरीक्षण में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन पाया गया और ऑनलाइन दर्ज स्टॉक तथा भौतिक स्टॉक में कोई भी विसंगति नहीं मिली। विभाग ने उपभोक्ताओं से गैस पाइप की समय समय पर जांच करवाने और लीकेज जैसी स्थिति में तत्काल गैस एजेंसी से संपर्क करने की अपील की है। इसी के साथ कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार। पहले आज री खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक री 10वीं वर्षगांठ रो जिक्र करता थका कयो, आ विश्व ने भारत री आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रो परिचय दियो। गृह मंत्री अमित शाह देश री पहली LNG चालित रेलगाड़ी ने साबरमती सू रवाना करयो, कयो लाडला 12 वर्षा माए रेलवे माए उल्लेखनीय परिवर्तन भयो। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कयो, राजस्थान माए बाजरो केवल एक फसल नहीं बल्कि काश्तकारी आजीविका रो खास आधार। और विश्व पर्यटन दिवस रे माथे प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या गया। सरकारी स्मारक माए सैलानिया ने निःशुल्क प्रवेश दियो गयो।

0: पाव शेड स्वचालित सिग्लिंग सिस्टम रो उद्घाटन और स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली री आधारशिला राखी जी। ए समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सु सुन रहा हो। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कहो है कि धोरारी धरती माए बाजरो केवल एक फसल नहीं बल्कि काश्तकारारी आजीविका रो खास आधार है। श्री चौधरी आज बालोतरा जिले रे गुड़ामालानी माए क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र रा प्रशासनिक और प्रयोगशाला भवन रे उद्घाटन जलसा माए बोल रहा है। वणा कहो कि बाजरा अनुसंधान केंद्र री स्थापना सु पश्चिमी राजस्थान री स्थानीय परिस्थितियां रे मुजब बाजरो उत्पादन नुवी कृषि तकनीक और नुवी और उन्नत किस्मा माथे अनुसंधान ने गति मिलेली जिनसु काश्तकारा ने सीधो फायदो मिलेला। इन मौके माथे राखीजा बाजरा कृषक सम्मेलन 2026 और कृषि प्रदर्शनी माए घनी तादाद माए स्थानीय काश्तकार भाग लियो। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कालेसु नवी दिल्ली माए शुरू हो रियो है। दो दिना ताई चालन वाले इन सम्मेलन रो उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेला। कृषि और किसान कल्याण महकमो आगामी रवि मौसम रे खातिर खास प्राथमिकतावां और तैयारियां मथे विचार विमर्श करने खातिर इन सम्मेलन रो आयोजन कर रियो है। सम्मेलन माए केंद्र और राज्य समन्वय ने मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और काश्तकारारी आय बढ़ाने खातिर कार्यनीति विकसित करने माथे मंथन वेला। सम्मेलन माए राज्यां रा कृषि मंत्रियां आपरी प्राथमिकता रबी मौसम री तैयारियां खातिर सुझाव देने रो मौको भी मिलेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पंजाब रा फिरोजपुर दौरा माथे रिया वणा नशा विरोधी यात्रा नशा मुक्त पंजाब रे तहत जनसभा ने संबोधित करो। इन मौके माथे वणा कहो कि यात्रा रो लखस पंजाब ने नशा मुक्त बनानो है। श्री शर्मा कहो कि सगला री सामूहिक जिम्मेदारी सु ही नशे रे खिलाफ चलाया जा रिया देशव्यापी अभियान ने सफल बनायो जा सके है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है कि नशा मुक्त कैसे करना है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं निश्चित रूप से हम पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया है और ये हमारा अभियान जारी रहेगा। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम पूरी सामूहिकता के साथ इस नशा के खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से इस नशे के खिलाफ जो हमारी सरकार केंद्र की काम कर रही है हम पंजाब के अंदर भी नशा मुक्त कर
0: आज विश्व वणा कहो कि विकसित भारत खातिर पर्यटन ने एक आर्थिक शक्ति रे रूप में बढ़ावो देने रो जतन जारी है। श्री शेखावत पर्यटन खातिर भारत ने दुनिया रो पसंदीदा देश बनावन रो संकल्प मजबूत करने री अर्ज करी। विश्व पर्यटन दिवस माथे प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। प्रदेश भर माए राजकीय संग्रहालय माए सैलानिया रो प्रवेश निशुल्क राख्यो गयो है। सफाई माधोपुर माए पर्यटन महकमारी कानिसु रेलवे स्टेशन माथे देसी विदेशी सैलानिया ने रीत रे मुजब तिलक लगार माला पहनार स्वागत करो गयो। इन रे चालता लोक कलाकारा कच्छी घोड़ी नृत्य समेत न्यारी न्यारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर रा संग्रहालय और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान माए सैलानिया ने मुफ्त घुमायो जा रियो है। प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे विकसित भारत जन सेवा अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। अलवर माए अभियान रे तहत पर्यटन स्थल फतेह जंग गुम्बद माथे स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम रे आखिर माए बठे मौजूद लोगों ने स्वच्छता री शपथ भी दिलाई जी। वठीने झुंझुनू जिला माए खेतड़ी उपखंड अधिकारी कार्यालय माए राखी जो सेवा सेतु शिविर रो जिला कलेक्टर अरुण गर्ग निरीक्षण करो। इन रे चालता श्री गर्ग न्यारी न्यारी जन कल्याणकारी योजना रा लाभार्थियों सु संवाद करो। पाली माए भी अभियान रे तहत पोषण और पौष्टिक व्यंजन प्रदर्शनी रंगोली और चित्रकला समेत न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। और अब मौसम प्रदेश माए पश्चिमी विक्षोभ रे असर सु मौसम फेरू करवट ली है। मौसम केंद्र जयपुर आज राज्य रा 16 जिला माए बिरखा रो येलो अलर्ट जारी करो है। इनसु पहले कोटा जिले रे मंडाना और जैसलमेर रे मोहनगढ़ समेत कई खेतरा माए बिरखा रे साथ है। राज्य रा कुछ एक हल्का माए थोड़ी घनी बिरखा हुई। बारिश और बादलों रे असर सु राज्य रा घनकर भागा माए तापमान माए थोड़ी कमी आई है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान माए तापमान अजय भी अपेक्षाकृत बत्ती बनेड़ो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक री 10वीं वर्षगांठ रो जिक्र करता था कहा कयो आ विश्व ने भारत री आतंकवाद रे खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रो परिचय दियो।

0: गृह मंत्री अमित शाह देशरी पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी ने साबरमती से रवाना करो कयो लाडला 12 वर्षा माए रेलवे माए उल्लेखनीय राजस्थान में भाजपा और विश्व पर्यटन दिवस रे माथे प्रदेश भर माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम रखा गया। सरकारी स्मारक माए सैलानिया ने प्रवेश दियो गयो। इंडे साथे ही प्रादेशिक समाचारों रो बुलेटिन अठे ही पूरो हो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले बजे
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती, प्रायोजक सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर।
2: क्लेम फॉर्म भरो, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, 15 दिनों में आसान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 7 बजे हैं और अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
1: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
0: सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
2: ग्राम भारती कार्यक्रम री वाट उड़ीकता सगला किसान साथियां ने अभिलाषा पारी की ओर सुने भरी राम राम सा। और नरपत भाई आपने भी मारी ओर सु घनी घनी राम राम सा।
3: सारा ग्रामवासियां ने नरपत सिंह रो राम राम, और अभिलाषा बहन आपने भी राम राम।
2: जी सा, देखो राम राम तो आपा कर लिया, पर राम राम के सागे कार्य टेम टेम पर आपा अपना कार्यक्रम में अपना जो किसान साथी है वहां से यही बातचीत करता रहे वहां कि भाई अपनो जो स्वास्थ्य है, अपनी खेतीबाड़ी है, अपनो जो पशुधन है, वहां सबको समय सारू ध्यान रखनो चाहिए। और जब समय की बात आपा करा तो देखो नरपत भाई, अब बार आपा देख रहे हैं कि सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड आपा ने महसूस होबा लाग गई छे। तो या जो मौसम में एकदम से परिवर्तन आयो छे, तो यो जो मौसम को परिवर्तन छे, यो ही अपने घर में बीमारी ने फैलावे छे। यदि इस समय आपा थोड़ी सी लापरवाही दिखा दी तो देखो कोई ना कोई इनकी चपेट में जरूर आ जाओ छे।
3: बिल्कुल बढ़िया बात बताई कि बार जो आपने बदलतो मौसम से तो इनका तापमान के अनुसार अपना समय लगे छे, क्योंकि टाइम अपना सर्दी जुकाम खांसी गला खराश एलर्जी बुखार बहुत सारी समस्या हो जाए जी, क्योंकि आप बदलता मौसम है, क्योंकि आप गर्मी से सीधा सर्दी का मौसम में हल्क हल्की सर्दी पड़े तो बिना अपनो शरीर सही कौन कर सके, इसलिए आपने बदलता मौसम में ध्यान रखना चाहिए। और आपने जो साफ और सुरक्षित पानी भी पीनो जबार कि स्वस्थ रहने के लिए अपन पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ पानी पीनो चाहिए। जी हाँ, बार जो भी मौसम चेंज हो रहे थे तो बीमा खावा पीवा की चीजों को बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
2: जी सर, तो देखो सर ध्यान रखबा की जब आप बात करा तो आपने यो ही ध्यान रखनो है कि अबार इस समय यदि थोड़ी सी भी लापरवाही आपा कर दिया तो लापरवाही को चलता आपने इनको बड़ो खामियानो। और आप देखो घर घर में देख रहे हैं कि अबार जो वायरल बुखार छे वो पनप रहे छे। और सर देखो अबार हाल ही में बिरखा को मौसम खत्म हुई छे तो चारों मेर कटे कटे तो देखो पानी भरेड़ो छे, तो ऊ पानी का चलता भी कई जगह मच्छर माखी देखभा में आयो छे, तो वे मच्छर माखी भी आपने बीमार करे छे। तो आपने वाको भी जाप तो करना है। और इनके साथ साथ आप यहाँ देखा कि हमारे यही मौसम में आपने ठंडी तासीर का जो भोज्य पदार्थ छे वाने खाबा से बचनो चाहिए। इनकी जगह पे आपने सुपाच्य और पौष्टिक भोजन काम में लेनो चाहिए। आप अबार जो फल फ्रूट आ रहा छे वाने काम में लेवा, गर्म तासीर का जो हल्का फुल्का भोज्य पदार्थ छे वाने काम में लेवा, और सुबह शाम की जो हल्की ठंड है भी मैं अपना जो बालक टाबर है वाने, और अपना घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वहां को स्वास्थ्य को थोड़ा सा विशेष ध्यान आपने रखना ही चाहिए।
3: बिल्कुल सही बताया कि बारी टाइम में बदलता मौसम अनुसार अपन थोड़ा व्यायाम पर भी ध्यान दिया, हल्को फुल्को अपन नियमित व्यायाम भी करना चाहिए जिससे कि अपनों जो स्वास्थ्य है भीम लाभदायक भी रह लो। मौसम चेंज हो रहे थे बी का कारण से जो आपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा शरीर की वह भी बढ़े लिया, अगर आप व्यायाम कर ला योग कर ला खान पान को ध्यान रख ला, और जो वातावरण चाहिए बी का अनुसार भी आपने जो भी ठंडी महसूस हो रही चाहिए या जो भी है भी को सावधानी बरतला तो आप ज्यादा ज्यादा बीमार कौन ला। और ज्यादा ज्यादा आप जो छोटा या बुजुर्ग व्यक्ति है बाको सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वह ई मौसम के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो बन मौसम के अनुसार कपड़ों पहनना चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए जिससे बाका स्वास्थ्य में जो बदलाव आए तो भी कारण से वहां ज्यादा ज्यादा जो वे परेशान हो जाए या बीमार होला वे कोने होला।
2: जी सा, तो देखो सा या तो ही बात जानकारी की और कार्यक्रम ने आगे बढ़ाता हुआ सुन ले वही बढ़िया सो गीत।
3: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: बीजू बारी आवे है आपने जानकारी की। तो जो ये महत्वपूर्ण समय चल रहे हो इस समय, तो इस समय जो जानकारी है वह भी ई मौसम के हिसाब से बहुत ही लाभदायक है। तो सर आज की जानकारी है सरसों की बुआई को उचित समय, बुआई विधि, बीज दर और उपचार और जीवाणु खाद का बारे में, और ई विषय माथे जानकारी देवा खातिर है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। तो सुना के कई जानकारी दे रहे हैं,
1: सुनाओ सर जानकारी।
2: ग्राम भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु नायक का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे बीच स्टूडियो में पधारे हैं। आज हमारी जानकारी का जो विषय है वो है सरसों की बुआई का उचित समय, बुआई की विधि, बीज दर, उपचार और जीवाणु खाद। तो सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हमारे स्टूडियो में, आपका स्वागत, नमस्कार।
3: धन्यवाद, नमस्कार और राम राम किसान भाइयों।
2: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरसों की अच्छी पैदावार अगर हम लेना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि उचित समय कौन सा है। सही समय पर किया गया काम हमें हमेशा अच्छे फल देता है या अच्छे परिणाम उसके निकलते हैं। बात जब खेती किसानी की है और सरसों की फसल की हम बात कर रहे हैं तो कौन से समय तक या किस समय तक हम उचित बुआई कर सकते हैं ताकि अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सके।
3: जी बिल्कुल, समयोचित प्रश्न है और विभिन्न क्षेत्रों में इस समय सरसों की खेती के लिए किसान भाइयों ने अपनी तैयारी प्रारंभ भी कर दी है।
2: जी
3: अलग अलग स्थान पर बुआई का जो समय होता है ना, वह तापमान, मानसून समाप्ति कब तक हो रही है, फसल चक्र में उसने कौन सी फसल लगा रखी आदि विभिन्न बातों के ऊपर निर्भर करती है।
2: जी
3: बुआई में देरी होने से उसका उपज और तेल की मात्रा दोनों में कमी जो है वो होती ही होती है।
2: जी
3: तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की बुआई जो है बिल्कुल उचित समय पर किया जाए। अब इसका उचित समय जो आपने पूछा है और किसान भाई भी जानने को उत्सुक हैं कि उचित समय कौन सा है, तो बुआई का उचित समय किस्म के अनुसार, क्योंकि हमारे संस्थान की भी और अन्य संस्थानों से या अन्य किसी प्राइवेट उसके भी है तो उनकी भी किस्में जो निकाली गई हैं वो अगेती अलग होती हैं, मध्यम समय की अलग होती है और पछेती अलग होती है। तो सरसों की जो किस्म है उसके अनुसार सितंबर मध्य से लेकर के अक्टूबर अंत तक का है, अर्थात इस समय से शुरुआत। लेकिन फिर भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अच्छे अंकुरण के लिए बुआई के समय दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतया औसतन 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान किसानों को देना चाहिए। मैं आपको कुछ एरिया का बताऊं कि वहां के लोगों की एक प्रचलित धारणा है कि पहला नवरात्र और बुधवार टलबाई नद्या, कि पहला नवरात्र है और बुधवार है तो हम तो सरसों डालेंगे चाहे 35 डिग्री ही तापमान हो और फिर वापस आ गए साहब उड़गी सरसों तो और जो बीज दो, तो वो स्थिति जो है किसानों के लिए ही नुकसानदायक होता है। आजकल तो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों का जो किसान बीज लेते हैं 1100-1200 रुपए किलो तक का बीज उनका लगता है। नवंबर के अंत तक भी बुआई करके और कुछ पैदावार किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि ये उसी स्थिति में होगी जहां पर कोई जैसे अगर अरहर की फसल खड़ी है या आपकी ग्वार जो है वो लेट से कट रही है, तो उन क्षेत्रों के अंदर आप इस तरीके से इन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं।
2: जी समय की हमने बात कर ली, अब बारी कितनी होनी चाहिए?
3: देखो सभी किसान भाई वैसे सामान्यतः आवश्यकता से ज्यादा ही बीज डालते हैं।
2: जी
3: बीज दर बुआई के समय किस्म और मिट्टी की नमी पर तो निर्भर करती ही करती है, फिर भी अगर लाइन से लाइन में बोई गई फसल है तो उसके लिए 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
2: जी
3: और जहाँ 4 बीघा में 1 हेक्टेयर होता है तो आप समझें 1 किलो बीघा का मोस्ट सफिशियंट उसकी सही मात्रा है, उससे ज्यादा किसान को नहीं डालना चाहिए। और बारानी, लवणीय या क्षारीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र की तुलना में 15 से 20% ज्यादा मात्रा में बीज उसको डालना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है थोड़ी खराब होती है, पूरा जर्मिनेशन नहीं होता है। और आवश्यकता से ज्यादा बीज अगर हम डालते हैं तो देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3,33,000 के करीब पौधे होने चाहिए सरसों के, और ज्यादा अगर हम डाल देंगे तो क्या कहते हैं ना कि अगर एक प्लेट में जितना भोजन रखा है एक व्यक्ति के लायक है या उसमें 4 व्यक्ति बैठा दिए आपने, तो किसी का भी

0: पेट नहीं भरेगा, सभी को पोषित रह जाएंगे।
1: बड़े काम की बात है। अक्सर हमारा किसान सोचता है कि हम ज्यादा बीज अगर डालेंगे ज्यादा पैदावार होगी, मगर होता उल्टा है ना, क्योंकि हर पौधे को पोषण की आवश्यकता होती है। तो बीज दर किसान भाइयों, आप जितना हमारे विशेषज्ञ बताते हैं उसके अनुसार ही रखें। अब डॉक्टर साहब, बारी आती है कि बुवाई किस विधि से करें। बीज का आपने बता दिया कि बीज दर हमें कितनी रखनी चाहिए, मगर बुवाई की कोई खास विधि जिससे कि सीधे हमारे पैदावार पर असर होता है?
0: हाँ जी बिल्कुल, बीज की बुवाई की विधि सबसे बढ़िया बात जो अभी मैं पहले भी कह रहा था कि लाइन सोइंग जो अगर हम करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी सामान्यतः क्या है कि ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ किसान भाई जुताई खेत में से ये पाया भी गया है कि सरसों की बुआई पंक्ति में अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो ही अधिक लाभ मिलता है। सरसों के बीज को हल के साथ लगे हुए जो उसका जो सीड ड्रिल जिसको हम कह सकते हैं, या पोरा या नाई का पोरा जो भी लोकल लैंग्वेज में किसान बोलते हैं, उसके या कोई यांत्रिक सीड ड्रिल हो इसके द्वारा बोया जाना ही उपयुक्त होता है। और पोरा द्वारा ड्रिल बुआई के बाद पाटा नहीं लगाया जाता है कि अन्यथा बीज क्या होगा अधिक गहराई में चला जाएगा, और यदि ज़्यादा गहराई में चला गया तो फिर उस बीज से जो है उसका अंकुरण जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है।
1: जी
0: और इसके अंदर अगर जो लाइन सोइंग करते हैं तो इससे बीज की बुआई दर, बुआई की गहराई का भी सही नियंत्रण हो जाता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी में एक समानता रहेगी, निराई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है। जैसे खरपतवार जो होते हैं अगर 30 सेंटीमीटर की आपने दूरी रखी तो बीच में से हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। यदि पौधे हमने ऐसे ही लगा खरपतवार जो नया, तो खैर क्या काफी समय से है ओरोबैंकी नाम का एक खरपतवार जो आता है, वो खरपतवार आप उसको भी निकालना आपके लिए बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि ये जो है कि कई बार बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो किसान भाइयों को थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में ओरोबैंकी अगर आता है तो उस खेत में सरसों की बुआई ना करके मेथी या फिर अन्य किसी फसल की बुआई करें।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही हम टीकाकरण की पद्धति है उसे अपनाते हैं, तो ठीक ऐसे ही बीजों को जब बोते हैं तो बीजोपचार की जो क्रिया है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। और अब आज का जो किसान है जागरूक हो गया है, तकरीबन सभी लोग इस चीज को जानने लगे हैं, इस बात को। लेकिन जब बात सरसों की फसल की आती है तो किस तरीके से बीज उपचारित करना चाहिए ताकि शुरू से ही जो है हमारी सरसों की फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे। शुरू की अवस्था में अगर रोगों की चपेट में अगर हमारी फसल आ जाती है तो आगे तक हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पूछी भी है और बीज उपचार के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी पहला जो आपका प्रश्न था कि बुआई की विधि, तो थोड़ा बुआई के समय कुछ सावधानियों का भी मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बुआई के समय मतलब कुछ सावधानियां ऐसी बरतें कि बीज जो सीड ड्रिल द्वारा डाला गया खाद है उसके संपर्क में ना आए। अगर बीज और खाद के दाने आपस में संपर्क में आ जाएंगे तो बीज के अंकुरण जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, तो इसके लिए बीज की बुआई 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें, जबकि खाद को 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर डालना चाहिए। यानी कि खाद जो है बीज से नीचे जाए 3 से 4 अंगुल, 3 अंगुल तो एटलीस्ट वो नीचे जाए ही जाए। उसके बाद में कभी भी खेत में जो पानी जो है वो भरा हुआ नहीं रहे, क्योंकि इसके बीज के जमने और पौधों की बढ़वार पर ये बुरा असर डालता है। अब आपकी हम करते हैं कि टीकाकरण और बीज उपचार जो भी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि बुआई के लिए साफ, स्वस्थ और रोग मुक्त प्रमाणित बीज का ही काम में ले। आप किसी भी सरकारी संस्थान से, या जैसे भरतपुर में जो हमारा सरसों अनुसंधान संस्थान है वहां से आप बीज ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की किस्मों के बीज इस समय वहां उपलब्ध भी हैं और किसान भाई जाकर के ले भी सकते हैं। तो प्रमाणिक बीज उपयोग लें। सफेद रोली से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिन क्षेत्रों के अंदर सफेद रोली जहां पर की आती है और किसान भाई बहुत ज्यादा उससे परेशान भी रहते हैं, वहां एप्रोन या SD35 6 ग्राम फफूंदी नाशक प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी
0: साथ ही साथ जो मृदा जनित या भूमि से जो रोग आते हैं उनकी रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा नाम की फफूंद से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको भी हम उपचारित करके और फिर सरसों की बुआई हमें करनी चाहिए। अगर प्रारंभिक

0: अवस्था में चितकबरा कीट या पेंटेड बग। और ये ध्यान रखिएगा कि चितकबरा कीट और पेंटेड बग हमेशा तभी ज़्यादा अटैक करता है जब हमने उचित तापमान से अधिक तापमान की स्थिति में बुआई कर रखी है।
1: जी
0: ऐसी स्थिति में सरसों को ये तेजी से काट डालता है। तो पेंटेड बग के लिए अगर हमें कंट्रोल करना है तो इमिडाक्लोप्रिड 70 WP 7 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करके और फिर उसकी बुआई करें। तो ये सब अगर प्रक्रिया किसान भाई कर लेते हैं तो निश्चित है कि कीटों से और रोग से प्रारंभिक अवस्था में अपनी सरसों की फसल को बचा पाएंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल हम जीवाणु खाद के बारे में बहुत सुनते हैं, तो क्या सरसों के लिए भी कोई उपयोगी जीवाणु खाद है? और यदि है तो हम सरसों की फसल में उसका उपयोग कैसे करें?
0: बिल्कुल, सरसों की फसल के लिए भी है और सभी फसलों के लिए जीवाणु खाद तो होते हैं। तो सरसों की फसल के लिए भी जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता बढ़ानी होती है उसमें दो जीवाणु खाद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी
0: एक तो है एजेटोबैक्टर और दूसरा है फास्फोरस घोलक जीवाणु, जिसको सामान्य आम बोलचाल में PSB कल्चर के नाम से किसान भाई अच्छे से पहचानते भी हैं। एजेटोबैक्टर जो जीवाणु खाद होता है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके पौधों को उपलब्ध कराता है, परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। और इसके प्रयोग से औसतन एवरेज अगर हम माने तो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर या 4 बीघा आप मान लीजिए परिवर्तित होकर के पौधों को उपलब्ध होती है। ये 10 से 15 किलो नाइट्रोजन का मतलब सीधे शब्दों में अगर हम समझें, 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अगर आ रही है तो लगभग लगभग 35 किलो से ऊपर यूरिया की बचत किसान की उसमें हो जा रही है। साथ ही साथ में जीवाणु बीज, ये जीवाणु बीज के अंकुरण तथा पौधे की बढ़वार में भी सहायक होने के साथ साथ भूमि में जो है अनेकों रोगकारी कवकों की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। इस जीवाणु से मृत कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी जो मृत कोशिकाएं हैं भूमि में वो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती है। ये तो बात हुई एजोटोबैक्टर की खाली।
1: जी
0: अब अगर हम फास्फोरस घोलक जीवाणु की बात करें तो फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में जितना भी अघुलनशील फास्फोरस होता है उस अघुलनशील फास्फोरस को तोड़ करके घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देता है।
1: जी
0: और जब उसको घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर देगा तो पौधे उसको ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं, जिससे कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके प्रयोग से औसतन 50% तक फास्फेटिक खाद की बचत की जा सकती है। अब इसको अगर हम मॉनेटरी इनपुट में समझें तो किसान भाई जिस DAP की खातिर परेशान रहते हैं 1500-1800 रुपए तक का पर बैग लेकर के आते हैं, यदि ये 10 से 15 रुपए का PSB कल्चर का पैकेट का उसका ट्रीटमेंट करके उचित मात्रा में अगर लगा करके बुआई करते हैं तो उनका फास्फोरस की आधी भी नहीं, मैं तो कहता हूँ चौथाई मात्रा भी अगर उसकी बचती है तो भी 400 से 500 रुपए उनके बचेंगे।
1: जी
0: तो उसमें तो ज़्यादा खर्चा तो कुछ होना नहीं है। और एक जीवाणु खाद से बीजोपचार के लिए जो तरीका है मैं थोड़ा सा एक बार वो भी बता दूं कि प्रत्येक जीवाणु खाद के 50-50 ग्राम के मिश्रण को आवश्यकता के अनुसार पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक बीजों के में छाया में मिलाएं। उपचारित बीज को 10 मिनट तक छाया में सुखाएं और फिर तुरंत बुआई कर काम मिलें। यदि भूमि उपचार करना है तो 4 किलोग्राम एजेटोबैक्टर और 4 किलोग्राम फास्फोरस घोलक जीवाणु के मिश्रण को 100 से 125 किलोग्राम पकी हुई या जो अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको छाया में समान रूप से मिलाकर अंतिम जुताई से पूर्व खेत में बिखेर कर मिला दें। इसके तुरंत बाद सिंचाई कर दें। तो ये जीवाणु खाद की इम्पोर्टेंस है जो अपने आप में दिखाती है कि किसानों के लिए कितनी फायदे की चीज़ है ये।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते रेडियो के माध्यम से कोई संदेश या आपके मन की कोई बात जो आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ या श्रोताओं के साथ साझा करना चाहे?
0: एक नहीं दो करना चाहूंगा।
1: जी स्वागत है
0: पहली
1: आपका।
0: पहली तो ये है किसान भाइयों की, जब भी आप खेत में खाद उर्वरकों का प्रयोग करें खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। जांच के आधार पर सिफारिश की गई मात्रा में ही पोषक तत्व फसल को दें ताकि आपका जो है आर्थिक रूप से भी फायदा हो और फसल को भी सही पोषण मिल सके। दूसरा, सरसों की बुआई का समय अति शीघ्र नजदीक आ रहा है और भरतपुर में हमारे संस्थान में बीज पखवाड़ा इस समय से 30 के मध्य आप सरसों अनुसंधान संस्थान से जाकर के विभिन्न किस्मों में से जो किस्म आपको पसंद है उसका बीज वहां से आराम से ले सकते हैं। बीज उचित मात्रा में उपलब्ध है।
1: जी डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जो श्रोता

0: और किसान भाई आपको सुन रहे हैं वो इस मौके का इस अवसर का फायदा जरूर उठाएंगे। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज हमारे बीच आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और सरसों की बुआई का उचित समय, बुआई की विधि, बीज दर, उपचार और जीवाणु खाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारियां दी। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: बहुत ही महती और चौखी जानकारी दी मधु बहन, सुशील कुमार जी शर्मा से दिलाया कि सरसों की बुआई का उचित समय, बुआई की विधि क्या की है, बीज दर की टाइप में अभी मैं उपचार की टाइप करा और जो जीवाणु खाद जे वो की प्रकार से प्रयोग किया। बहुत ही चौखी जानकारी दी अपना ग्रामवासिया ने, तो थाने करो करो धन्यवाद कौन दिया। तो सुना देख चुको
2: साहब को इशारो आपके बुचारा चो कि आप एक बढ़िया सो गीत सुन लेवा, पर गीत से पहले सुन लेवा एक संदेश।
3: सुने सुनाएं,
4: पीत कांति लाएं,
3: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
4: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
3: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
4: सरसों उपजे शानदार,
3: सरसों खेती का उपचार
4: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
3: खेत पौधे और बीजोपचार,
4: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
3: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
4: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार
3: और प्रदेश की खुशहाली का
4: तब होगा सपना साकार।

0: हाँ तो साथ देखो ये गीत संगीत और जानकारी के साथ साथ सुनता सुनता अपना जो कार्यक्रम है ग्राम भारती भी को टेम पूरे हो तो चालू है। तो किसान साथियों से यही कहवा चाह के देखो बदलतो मौसम छे स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखो आपनों भी अपनी खेती बाड़ी को भी अपना डोर डांडा को भी अपना घर का बड़ा बुजुर्गा को बालक टाबरा को सबको विशेष ध्यान रखो। और यही महत्वपूर्ण बात के साथ कार्यक्रम ग्राम भारती ने देवा अटे ही विराम आज्ञा दियो अभिलाषा
1: और नरपत सिंह ने
0: चाला और करा
1: राम
0: राम राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसो अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए
2: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
2: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
2: सरसों उपजे शानदार,
0: सरसों खेती का उपचार
2: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
2: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
2: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार
0: और प्रदेश की खुशहाली का
2: तब होगा सपना साकार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में पत्थर के सनम फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत का सफर जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: अमिताभ बच्चन की आवाज़ में लावारिस फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, लैला मजनू फिल्म से।
1: मेरे कासिद तू जब पहुंचे मेरे दिलदार के आगे, अदब से सर झुकाना हुस्न की सरकार के आगे, जबान से गर ना कह पाए तो आंखों से बयां करना, मेरे गम का हर एक किस्सा मेरे गम खार के।

आशा भोंसले की आवाज़ में लोफर फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना। अगला गीत सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की।

मी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद।

0: काका राम राम।
1: ए रोम रोम फ्याय रोम रोम फ्याय आब्रो न्याओ भिजो कोकिनीर गाँव भिजो।
0: गोपाल सुनिए गाँव रायसर है।
1: आओ हो गोपाल जी रायसर में कोई करो।
0: सोने चांदी को काम करता हूँ।
1: हो नो मूंगो गलो यो एनियो।
0: हाँ मूंगो तुमको काका काम करा। एक कुनन नाम है
1: आजिया
0: और एक ज्योति है।
1: अहे
0: एक खुशबू है।
1: आहो ए भाया फटे कौन फटे
0: भाई। एक दस टीम फटे है, एक आठ टीम फटे है, एक सौ टीम फटे है।
1: अरे वाह ये वाजन सही है। बिंदनी आका जो कौन करे धोने।
0: बिंदनी आका कौन करे। बिंदनी सिरो कर कर सीमा है।
1: आओ
0: सिरो कर कर सीमा है।
1: अरे वाह ये वाजन काका एक सवाल करता उसका जवाब मिलो।
0: हाँ देव
1: ऐसा कौन सा दान है।
0: हाँ
1: ऐसा कौन सा दान है जो अमीर गरीब दोनों करते हैं।
0: काका इतिहास तो हमने नहीं आती है।
2: हाँ काका।
1: ए भाई हार गया हम जीत गया तुम ही हारते हो क्या।
2: नहीं हम जीतेंगे।
1: ए जीते भाई कितने हम जाओगा।
2: हाँ
1: तो भाई को बोलो हेलो।
2: हेलो राम राम डटलियो बोलो डटलियो।
0: भाई मैं
2: अब आ तो मैं ना थे मैंने सिराटी याद आई थी मैंने सिरा टू बचे। हाँ मैं आ तू टाटा पर्सन पूछे थे टाटा उतर आवे थी जाने।
0: उतर आओ कौन मैंने तो
2: मैं बताऊं थी।
0: हाँ
2: बेटो वह कन्यादान।
0: कन्यादान होता है।
2: हाँ डरी भी तेरे अमीर ही तेरे।
0: अच्छा अच्छा
2: आ टाइम सुना प्रोग्राम में
0: समय का भरोसा नहीं है।
1: ए कहेंगे भाई
2: ए समय का भरोसा तो नहीं सुननी चाहे।
1: अच्छा तो पलटी मार सकता है तू जाऊ ना मार बेटा।
2: अच्छा है।

0: राम।
1: ए राम राम जाई, राम राम जाई, आप रो न्याओ भिजो को किनीर गाँव भिजो।
0: नाम शिवलाल है, गांव नागौर है, कुमारवाड़ा में बोलूं।
1: ओ हो हिउजी, कुमारवाड़ा में नागौर में कोई करो
0: ने करूं, माला फेरू काका।
1: ओ हो माला फेरो, राम जी नु नाम लो, एरु जो को काम तो कोई हो ही नहीं सके।
0: हाँ
1: आ जो की बात है, बिना उम्र की दिख ले लियो।
0: उम्र 64 है।
1: ओ हो गिनती पूरी राखो थे तो।
0: हाँ
1: और पोता पोती हवा करे लोटो पानी भरे
0: और कहीं करे।
1: ए केनो तो माने थानो।
0: हाँ माने।
1: हाँ सही बात है भाई, वो बुढ़ापा में कहीं और कहीं जाप जे लोटो भर दे, टेम पर रोटी जिलाई दे, थे माला घोटू ही हो।
0: हाँ
1: ए थाने प्रोग्राम कैसे योग लागे हो?
0: प्रोग्राम बड़े लागे पर मतलब फोन कौन लागे?
1: अरे फोन लाग गयो आज हजार रुकी बजे। ए भाईयो।
0: हाँ सा।
1: ए और सब क्या ने घर में परिवार में हो?
0: मैं ऐसा।
1: ए मारो पोता उड़ो ढगलिए थोड़ो इन हम जो नियो फटे कौन करे हो?
0: ढगला है।
1: ए ढगलू रे।
2: हाँ टाटा।
1: ए दाजू बात।
2: हेलो।
0: हेलो।
2: दाजी पटेल आदू।
0: खुश रहो।
2: मैं ना तो पढ़ाई तो करूँ पर चाहे टाबर हूँ वो थोड़ा सा ठेल लूँ।
0: अरे तू पढ़ाई पूरी करे डबलो।
2: ठहरू ठहरू अब ठेठे दियो सर वो ठहरू आज।
0: हाँ पढ़ाई पूरी ध्यान रखना पढ़ाई को।
2: अब मैं थोड़ा चाहे जिम्मेदार जाते रहूँ ठहरी है ना ब्याह साझा हम जाते रहूँ ना जाना ताम डड़बड़ जावे।
0: अरे जीवन जावे जब चौको पर पढ़ाई को ध्यान पूरा राख।
2: सही बात है, माला फेरो मैं पढ़ाई ठहरू।
0: हाँ
2: टाइम सुना था प्रोग्राम में
0: हेली हेली।

0: नागौर
1: प्रभु नगर से
0: आओ हो प्रभु नगर नागौर से कौन बोलते हो नाम तो भिजे हो
1: नरेंद्र बोलो सा
0: आओ नरेंद्र भाई कहीं काम जिंदा हुए हो
1: खेती बाड़ी का हो रहा है काका जी
0: आए खेतिया में बार खाई लिए ला रहे अभी कड़प बाट ली कौन बाट ली
1: कड़प कौन बाटी तेल गवा रही है काका जी
0: आज हल्दो हम वो देखो रूड़ो आवे
1: है रूड़ो आवे काका जी
0: हाँ ये बीरा और भी तो गर्मी परिवार में सब किया नहीं हो
1: ठीक है काका जी
0: ये थोने प्रोग्राम कैसे योग लागे हो
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया लागे फोन कौन लागे काका जी
0: ये आज लाइयो हटावड़ी उगी बचे
1: है आज कई सालों लगी हो काका जी
0: अरे वाह ये तो काका एक सवाल करता उसका जवाब दे सकता हो कहीं
1: है आज हम देगा काका
0: जी तो एक काम करो पांच बार बोलो कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पाकर बोलो
1: कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़ पका पापड़ कच्चा पापड़
0: ए जगलू ये
2: पता मैं पापड़ खाऊं
0: आई ने पापड़ खाओ बार मैं जूजेरी मेलू भाई दो भो नहीं हो बोल हेलो
2: हेलो
1: डगलो भाई राम राम
2: राम राम पटेल अडू सा
1: कुछ रहो मौज करो
2: तातो तो ये पापड़ ठुआ हो संचालित तो ठुआ हुई तो नहीं हाँ वो था हाल चाल है ठंडा
1: और क्या नो
2: अब मैं तो ठीक हूँ बाहर तो ना जिमन जा रहा हूँ आज
1: हाँ सरा चल है
2: हाँ मैं तो सही और सत्य जिमन जाते रही हूँ
1: काका जी नहीं लग जाए जो
2: तातो चाल है तो नहीं ना मैं अकेले जाऊँ
1: अकेला ही जाओ
2: प्रेम रातू नहीं है मन बुलावे सदला
1: हाँ
2: टाइम सुना था प्रोग्राम में
1: फिर बालो

0: राम राम शाह।
1: राम राम शाह, राम राम शाह।
0: ए आप रो न्याओ भिजो कोके नेर गांव भिजो।
1: नाम गोपाल राम जाखड़ गांव बोशेरी।
0: ओ गोपाल जी बोशेरी में कोई करो।
1: कहीं करा सीटा थोड़ा।
0: ओ हिजियां दौड़ो जल्दी जल्दी दौड़ लो बिड़ाओ रूलो आवे की था नी अब फिरो नुकसान करी लो।
1: हां आधे एक तोड़ ली थोड़े और तोड़ ना।
0: आई जब नहीं जावे तो मैं आ जियो। मैं तो चाय बना बना दे दियो थाने और की नहीं करूं।
1: नहीं नहीं मैं तोड़ ला।
0: अरे वाशिया और बताओ गांव में परिवार में सब क्या नहीं हो।
1: सब ठीक है।
0: ए कोई नशो पत्ते तो कोनी करे घर के मायने।
1: नहीं नहीं कोई कौन करे।
0: आ भी रहो नशा नाश का कार रे नशो वालों को रे उन्हों आपने तो। और बताओ थाने प्रोग्राम कैसे योग लागे हो।
1: प्रोग्राम बने तो लागे
0: है। ए जगलू रे।
2: हाँ टाटा।
0: ए भाई हिजे थोड़े थोड़े हूँ जाओ जिने जाप रो जिने तो मैं जाऊँ।
2: हाँ जानू पड़े मने टाटा। हेलो
1: हेलो
2: राम राम पड़े लाडू सिटा थोड़े ना हूँ।
1: नहीं नहीं सिटा तोड़ ला मैं।
2: और टाच रहा हो यहाँ तो नहीं थान थेट में
1: कने हो या
2: टाच रहा तो मैं थावन ना आऊं थान थे।
1: हाँ जी या
2: और पढ़े ही लिटे तेरी थान तेरी थे
1: पढ़े पढ़ूं दशरी में।
2: हाँ आ टाइम सुनाओ थान प्रोग्राम में
1: कैसे री बालम
2: टाटा
0: आ भी जाओ
2: देसरी आ बाल में आओ नी पठारो मारे देश
0: आई जो गीत जाऊं ना
2: ओ चाहे

0: राम राम काका जी पगा लागू।
1: ए जीव दारो राम जी थारी लंबी उम्र घरे आप रो न्याव भीजो खोके नीर गांव भीजो।
0: गांव मारवाड़ मुंडो धर्मराम बोलू काका जी।
1: औ हो धर्म जी मुंडवा में कोई करो।
0: रात बरसात हुई गी गवार बाजड़ो फुडियो है।
1: आई है जन थोड़ो घणो नुकसान करियो
0: है। ए थोड़ो घणो हुयो है काका जी।
1: ए अब राम जी का खेल है बीरा राम जी राके गिरी जाले ने धानी जाले ने मांगी जाले।
0: आई बात है काका जी।
1: और बजो काम में दीवार में सब किया नहीं हो।
0: राम राजी है काका जी आप दवा बोलू।
1: ए राम जी की कृपा उनी जी जी भी रहो धोने प्रोग्राम के शोक लाग गए हो।
0: राम बड़े हाथ और लाग गए सभी परिवार अगले बैठ ने भुना आठ पोरी भुलता ही रहवा।
1: अरे भाई शवाई ओ कोई का परिवार के माई नशो पत्ते तो कोनी करे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अपन यारो काम ही कौन चाल ले।
1: अरे भाई ये जो की बात है नशा नाश का कारण है। अबे काका एक सवाल कर दिया उसका जवाब भिनाना पड़ेगा।
0: बताओ बताओ।
1: ये वो कौन सा जीव है जो बिना पका के बहुत उतावड़ा दौड़ता है।
0: ओ सवाल तो काका जी कोनी आवे।
1: ए डगलू रे।
2: हाँ टाटा।
1: ए तुमको आउटा ही गई।
2: मुझे नहीं आता है।
1: ए तुम भी हार गए धर्म भाई हार गए।
2: आप बताए बता दो जल्दी से।
1: हम बताते वो हाँ बोता है।
2: अच्छा सांप तो सही बात है पर तो वो तो नहीं।
1: हाँ बग नहीं होता पर वो काटा काटा नाड़ता है।
2: हाँ मैं तो आधे दौड़ जाऊँ लगा क्यों मैं तो।
1: हाँ भाई को बोलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ
2: धर्मो जी।
0: हाँ ढगलू भाई।
2: धर्मो जी पटेल।
0: हो भगवान खुशी रखे आपको।
2: और ठिया तबियत पानी।
0: बहुत बढ़िया साहब आप दवा होनी।
2: हाँ ध्यान रखो सर अपन तबियत को ध्यान रखो पहले।
0: मैं एक छोटो सवाल पूछना चाहूँ ढगलू भाई ने।
2: हाँ पूछो सर।
0: अपने जो रावण हो जो रावण तो हार किसके गाँव हो।
2: अपन तो मंडोर हो बचे मंडोरी।
0: वाह साहब धन्यवाद धन्यवाद।
2: होशियार हूँ ना मैं।
0: हाँ बढ़िया बढ़िया बहुत ही।
2: आसान साइन सुनावा।
0: आज अपने चंपा में तीरो
2: टाटा।
1: हाँ
2: चंपा में तो ये सुननी चाहे।
1: ए ओए क्या मारे बेजा।

0: राम राम काका जी पगे लागू।
1: ए जीव दारो रोम जी थोड़ी लंबी उम्र घरे आबरो न्याव भिजो कोकी नीर गांव भिजो।
0: मेरो गांव है जी अनूप शहर तहसील बादरा जिला हनुमानगढ़ बोलूं जी मैं गजानंद शर्मा।
1: आओ हो गजानंद जी।
0: हाँ जी
1: क्या नो थे ओ?
0: मैं बढ़िया जी थे क्या काका जी।
1: ए काको रेडी रेडी बने बादरा कानी शमा ने कोकरे रोमा शमा कही जो।
0: हाँ कमान काका जी।
1: ए थोने प्रोग्राम कई शोक लग गए हो
0: काका जी? प्रोग्राम है तो जोरदार लगा मिश्री प्रगोष तारीफ करा बीती थोड़ी है काका जी।
1: सब गांव में परिवार में आनंद में है?
0: हाँ एकदम रेडी बैठे काका जी।
1: ए कोई परिवार में नशो पत्ते तो कौन करे?
0: है कौन करे काका जी?
1: अरे भाई सेवा नशा नाश का कारण भाई वो अलग ही रे उड़ो।
0: हाँ जी नशो नाश नशो श्री को नाश करे जी।
1: हाँ सही बात पोता और बिरु हटे ही करोगे?
0: हाँ पोता हटा ही करांगा मर मैं सागे और है काका जी बैठे मैं भी नाम लेना कहे है।
1: ए ले लियो शाह
0: मदन लाल शर्मा है, मुरारी शर्मा है, डॉक्टर ताराचंद शर्मा है, पोतो है जी पोते जी आपू शर्मा फिर लोड़ा जी। काका जी एक अड्डी है मेरी मैं पूछूं थाने।
1: ए बजाओ शाह।
0: आम आमेर का तिल बीकानेर का नागौर की जड़ तीनोंगी एक ही जड़ नागौर को बड़ तीनोंगी एक ही जड़।
1: अब भाई मने आयो वो निका को हार गयो थोरो ढगले ने पूछा।
0: हाँ
1: ए ढगलू।
2: हाँ काका।
1: ओ ढगलू
2: आयो आयो।
1: ए भाई मने फसा दियो तुम निकाल सकता हो कई?
2: अब निकल आना चिंता की बात मत रे आता रहते।
1: ए जो कहीं होता तुम बजाओ।
2: आता हुए अश्वदंडा की जड़।
1: आज ओ हो ऐसे ही है कही हो गजानन जी?
0: ओ है जी आंकड़ो है आंकड़ो।
1: ओ आंकड़ो
2: तो बचा।
0: हाँ एम आम लगा पहले अंदर तिल हुए है वहाँ रूई विका नेर गया है बड़ ओ नागौर को ये किधर है?
1: अरे वाह ये वाह बात कर भाई को बोल रहे हो।
0: हेलो
2: पटेल लाडू सा
0: राजी रो खुश रो भगवान लंबी उम्र करे थारी।
2: और अनूप शहर में टाइम चला थे अबार?
0: मैं जी रंग पुट्टी को काम करूं मकाना दीवारा रंग रंग करूं मकान तैयार बनाऊं एकदम सुंदर।
2: दीवारी आज ही मारे कर्जन थोड़ ढाणी ते रंग।
0: हां थारे कर्जन जरूर आ जाऊंगा जे बुला लियो आ जाऊं मैं।
2: हां बुलाऊंगा टाटा बुला लिया ना आपा।
1: ए जरूर बुलाएंगे भाई को पहले मुझे प्रोग्राम में कई पूछा
2: भाई जी हो।
0: हां जी
2: आज टाइम सुना मान प्रोग्राम में
0: आज माने राम निवास राव को कोई बढ़िया सो भजन या कोई गीत सुना जे लोग गीत
2: टाटा।
1: रामनिवास
2: राव तो भजन सुननी चाहे
1: मैं अगर भी जी खाऊ जाऊँ तो मेरे भी
2: अच्छा है।

0: है मारे भैया, वो तो भयंकी बोयंकी शिव की पिशिन को पोगा
1: मे
0: पोगा में कोई भाई गीते भजने होना चाहूँता है तुम कहीं गेता हो फोन नहीं करो रेडियो स्टेशन फोन करो
1: सही बात है
0: सही बात है बता कट करो चीजें कितनी बजे करो कहीं निम्बरे
1: रेडियो स्टेशन फोन टनवे थाना बीच वाटा 12 बजे 8 बजे थी
0: आजिया
1: और नंबर बता दियो नोट कर लीजियो
0: आओ
1: 015-82-240-168।
0: अबे गाय गिरु एक दो दो बोले एक को दे दा बोले यूं बोल मारे बेटा मिंडी एक को पांचो आठ दो दो
1: दो
0: ए दो जो को मिंडी एक को जगो
1: आटो
0: आज ये मां दे फोन करे
1: सही बात है।
0: अब बेटा कई भैया का फोन है हम सुमे की गुमी मिले नहीं सी गया तो उनका पाना पांचो
1: अबार पांचो अबार पांचो भोपाल दे दो आयो राजेश दिवेटो
0: है
1: जेरवाड़ी नाडोर आयो राज देवी शर्मा तो
0: आओ
1: जाइलू संपत कुमार शांति देवी अनिल और अमन तो
0: है
1: और मानत लाओ आयो सरवन कुमार जी इनतिया तो
0: एने केनो आगल दी द्वार का फोन गिड़गिड़ी जो
1: टेडम।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थे सुभाष कंडारी और ढगड़िया की भूमिका में थे संजय पाराशर।
0: ए बेचारी
1: हाँ टाटा जी
0: अब बताओ आज के प्रोग्राम में तकनीकी हयो कस का है
1: राजा राम जी टेडर तो
0: आज के प्रोग्राम के बजदूत गीता
1: अशोक कुमार जी डोयल
0: अब हंडेज लगाओ मारे भैया
1: अब लगाओ मोबाइल लगाओ स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो हेलो डोरमैन
0: होंगे जब आप रेखो के नीर होगी
1: डर लेता डिरा उसी तट्टे है
0: रोम रोम श्याई।

अभी आप सुन रहे थे हेलो गोरबंद, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया।

0: कहा ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वॉश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, वुमेन्स स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण। 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
4: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनका सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
5: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor. Who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
6: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
7: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
6: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
8: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के लिए।
6: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
9: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है सुनैना फिल्म का गाना यशुदास की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपके लिए इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवा रहे हैं। घर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक कर रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: का शायर।
1: आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

0: भाई मामला क्या है आज के फनकार कार्यक्रम में? आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलक के फिर न देखना नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।
0: यशराज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे। यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपने सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

0: बनेगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्मपुत्र।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब बीआर फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त।

अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बी.आर. चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई।

0: फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
1: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
2: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
1: रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ।
2: नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
1: तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। रवि, जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
2: मेरे पास मां है।
0: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के दो साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
3: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत

0: इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जान एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।
1: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलक के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
0: और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को हमारा

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: बाद।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगातार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एंसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तमिलासरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। प्रवीण ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकटेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, प्रवीण, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
1: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Ian Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
3: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number 1 in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day 2 in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day 1 in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Esha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
1: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले हैं, विदुषी बताती हैं।
3: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल, धीरज, नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना, विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता, कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपी 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट 4। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगन विद 6-0 victory over the United Arab Emirates in the round of 16 and followed that up with another commanding 6-0 win over Vietnam in the quarterfinal. And now have a semi-final against Japan to look forward to. So in recurve, India has three teams through to the semi-finals. The men's team will face Iran, the women's team will take on China, and the mixed team will face Japan. These three recurve semi-finals are scheduled for October 2nd. But the good news from Indian archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil, Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter-final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These three compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
1: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया।

0: 18-21 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेटलिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेटलिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last 8. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड वन में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
4: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द विमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तक्रो डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: अभी आप सुन रहे थे एशियाई खेल 2026 की दैनिक झलकियां FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 8:51 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि। जय हिंद।